जय गुरु भाई बहनों, आप सबको गणमान स्वागत करो हूँ हमारी आज की परबात की सभा में। आप सब भाम दी रहा हो आपनो सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM माते। वो हूँ अपने हाथे अपनी पुनंजलि पारेश्वर ने आशीर्वाद। सोमवार ने तारीख 10 अगस्त 2026 नो दाड़ो है। भाई बहनों में देखी रहा हूँ की अपने स्टूडियो की घड़ी में परबात ना 6 बजे के है। तब आपने शुरुआत करो परबात की सभा में प्रसारित था वारा कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। तो भाई बहनों आज सभा ने शुरुआत करेंगे सप्ती की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की। यहाँ में अपना हम रंगा आज न सुविचार ने हाथी भक्ति में गीतन है। पणस क्रम में अगाड़ी बढ़ेंगा किसान भाई बहनों तक जुड़ कार्यक्रम खेती बाड़ी। आ कार्यक्रम आप हम रिश्को का ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने मो आपनी बुन अंजलि पारेश्वर ने हाथे। इस कड़ी में अपने बीजा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगा जेने कहे बालको नु बालपन एटले कार्यक्रम सच्चा बचपन। आ कार्यक्रम आप हम रिश्को का ठीक 7 बजे प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मो आपनी बुन अंजलि पारेश्वर ने हाथे। इस कड़ी में अपने अगाड़ी रुख करेंगा तमारी ने अमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज ने आड़ी। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 7:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथ थी। इस कड़ी में अपने अगाड़ी बढ़ेंगा अपने अधिकार कानून नियम तक की जुड़ कार्यक्रम सच्चा स्वराज। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 8 बजे प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर इटले मो ने मारे हाथे रहेंगे हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट। अणस क्रम में बढ़ते तके अपने रुख करेंगा राजस्थानी गीत तक की जुड़ कार्यक्रम लोक संगीत। आ कार्यक्रम आप हम रिश्को का ठीक 8:30 माते श्रोताओं बिजु कार्यक्रम श्रोता का ठीक 9 बजे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। आ कार्यक्रम लेने आविंगा प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मनीषा पटेल। इन बाद भाई बहनों ठीक 9:30 माते आप हम रोगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान। आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी भाई बहनों हमारी आप तक की हिंदी मुलाकात था का कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में ठीक 10 बजे। आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी। इन बाद भाई बहनों शुरू था का अपनी पसंद का कार्यक्रम जिन्हें आप हमारी शुकों का परबात 11 तक की बोपर 1 बजे में बस में। भाई बहनों अगर आप भी अपनी फरमाइश न गीत ने हम रू चाहो तो मैंने लकीन मोकली शको फिल्म नाम गीत ना बोल अपना नाम ने अपना गाँव नु नाम हमारे अणा व्हाट्सएप नंबर माते हमारो नंबर है 9460051234। तो बहन बोनो आ तो हती हमारी आज ने प्रभात की सभा में प्रसारित थवा वाली कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। अब आवो अपने सभा की शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की।

जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: सेहत नो राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: एवो केवाय जई वेरे एक बैरू मजबूत बने है, तई वेरे पूरो परिवार मजबूत बने है।
0: पण मजबूती खाली शब्द केवा थकी नती आवती, आवे है अधिकार थकी, सुरक्षा थकी अने आपड़े अस्तित्व नी पहचान थकी।
1: जमीन पैसा माते बैरा नो नाम एने हपना नो पहलू पगतियो है।
0: इने मले है आत्मविश्वास, रुपया नी सुरक्षा अने आपड़ा फैसला खुद लेवानी ताकत।
1: तो आओ बनो आजे मली ने आवाज उठाव, एटले हंगरी सूर्ये हंगरी बुने हंगरी माए आपड़ा हक ने जमीन माते गर्व थकी उभी थई शके।
0: बोन ने अधिकार, केम की अधिकार असली ताकत है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करा हूं अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे जहां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो किसान भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि आपड़े जे गांधी जी ने स्वराज ना जे विचार हता एने माध्यम तक की आपड़े खेती में हूँ परिवर्तन लावी शका। तो किसान भाई बोनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक की घणा कानी वाते थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा आपड़ी वाते। तो भाई बोनो आप हमर तरह जो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: ભાઈનબોનું ગીત તો આઈશું પૂરું, નેણા ગીત બાદ એક વખત ફેરી આપણે ભાઈબોનોનું અમે ઘણીમાન સ્વાગત કરા હો અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈનબોનું ગીતે કે પહેલા આપને વિષય ઉતાર દીધું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હ ગાંધી સ્વરાજના જે વિચાર હતા એને અનુસાર આપણે ખેતી મેં હું પરિવર્તન કરી શક. તો ભાઈનબોનો આના વિશે માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી વિષય વિશેષજ્ઞ જોડી રહે ને એને થકી આપણે વાત કરી રહી હૈ આપણે રેડિયો સાથી જાગૃતિ ભટ્ટ. તો સપ્તાહ કે પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત મોરે કરા આપણી વાતે.
1: શ્રોતાઓ, આજ અમારે બીચ મેં દેશ કે જાને માને કૃષિ વિશેષજ્ઞ કિસાન ચિંતક વ ગાંધીવાદી શ્રી કપિલભાઈ હમારે વાગડ રેડિયો કે સાથ જોડ રહે હૈ. તો સર, સબસે પહેલે આપકો નમસ્તે.
2: નમસ્તે
1: સર, આપકા સ્વાગત કરતે હૈ હમારે આજ કે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. ઓર સબસે પહેલે હમ આપકા પરિચય જાનના ચાહેંગે.
2: નમસ્તે વાગડ રેડિયો કે શ્રોતાઓ કો, મેં ગુજરાત મેં બડોદા મેં રહેતા હું ઓર કૃષિ વિજ્ઞાન કા વિદ્યાર્થી રહા, કૃષિ મેં પઢાઈ ભી કી ઓર કરીબ 35 સાલો સે દેશ મેં જૈવિક ખેતી કી દિશા મેં જો ભી કામ હો પાય ઉસમે થોડા સહયોગ કરતા હું.
1: બિલકુલ,
2: પોલિસી લેવલ કે ઉપર, વિજ્ઞાન કે લેવલ કે ઉપર, થોડે સંશોધન કે લેવલ કે ઉપર, કિસાનો કો અચ્છી તકનીક સિખાઈ જાય, ઉનકો બાજાર દિયા જાય, એસે હર ક્ષેત્ર મેં કુછ ને કુછ થોડા છોટા મોટા કામ કરતા રહેતા હું.
1: સર, યે બહોત અચ્છી બાત હૈ કે આપ કિસાનો કે લિયે ઇતના સબ કુછ કરતે હૈ. તો આજ હમ આપસે જાનના ચાહેંગે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ મેં કિસાનો કે લિયે ये जो दौर है वो कैसा है और उससे हमारी जो स्थानीय स्तर पर इसे कैसे निपटा जा सकता है.
2: अच्छा सवाल है. किसान अन्नदाता है और किसान ये महसूस करे कि उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती.
1: बिल्कुल,
2: खाना किसानों के बिना देश में दुनिया में पैदा नहीं होता है.
1: बिल्कुल,
2: मगर आपदा ये है कि किसानों की स्थिति रोज न रोज दिक्कत वाली हो जाती है. तो वो कुछ हमारे तौर तरीके, विकास की दिशाएं और विज्ञान की गलत उपयोग कई बार और सरकारी कुछ नीतियों से भी ये संभव होता है कि किसानी करना इतना आसान नहीं रहता
1: नहीं है. बिल्कुल,
2: भले ही वो बहुत ही अनिवार्य व्यवसाय है. तो मैं दो तीन बातों को ऊपर थोड़ा कहना चाहूँगा इस विषय में कि अपने संसाधनों के को सही तरीके से वैज्ञानिक रूप में इस्तेमाल करे, कार्यक्षम रूप में इस्तेमाल करे, जमीन पानी का रखरखाव करे, पाकों में वैविध्य लाए, अपनी ज़रूरतों को पहले ध्यान में रख के बुवाई करे और अपने खाने के लिए शुद्ध पैदा करें. अगर इतना जो किसान शुरू कर लेते हैं तो शायद वो बाजार के शोषण का से मुक्ति होगी कुछ हद तक और उसको थोड़ा ज्यादा संतोष प्राप्त होगा.
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि किस तरह से हमारे किसान भाई बहनों को ये वर्तमान जो परिस्थिति है उसे कैसे निपटा जा सके. तो जैसा कि आप बता रहे हैं सर कि हमारे जो किसान भाई बहन है वो अन्नदाता है और वही हम आज अगर बाजार के भरोसे बैठ जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा. यही हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि कृषि भोजन के लिए जो महत्वपूर्ण है हमारे किसान जो खेती करते हैं, परंतु आजकल हम देखते हैं कि वो बाजार उन्मुख होती जा रही है, उसका संतुलन हम किस प्रकार से कर सकते हैं.
2: ये दूसरा अहम सवाल है
1: जी.
2: देखिए, बाजार अनिवार्य चीज है और नगद के आने से पहले भी लेन देन से भी तो बाजार चलता था. कहीं हाट चलती थी, कोई गेहूं देता था, उसके सामने चना लेता था. तो उस प्रकार से बाजार तो होनी चाहिए
1: जी सर.
2: और हमें पैसे की भी जरूरत है. बाजार पैसे सिर्फ बाजार में मिलते हैं, वो खेत में नहीं उगते, जंगल में नहीं उगते, न तो उसकी बारिश होती है.
1: जी जी.
2: तो बाजार में जाना तो जरूरी है.
1: जी जी.
2: मगर इस प्रकार से बाजार में जाए जहाँ पे हम अपनी शर्त पे अपना लेन देन कर पाए.
1: जी सर.
2: जैसे कि कुछ चीज बेचनी है तो जैविक किसान कहेगा कि भाई मेरे तो मुझे ये लौकी इस दाम से बेचनी है, उससे कम दाम में तो मैं नहीं देना चाहता.
1: जी जी.
2: तो अगर वो अपना दाम तय कर पाए, उस प्रकार की खेती करे, इस प्रकार की पैदावार करे, ये प्रोसेस कर ले, या तो जैविक प्रकार की कोई चीज कर ले या जो चीज बाजार में कम बनती है उस प्रकार की पैदावार करे ताकि वो दाम खुद तय करे, तो उस बाजार का अपने हाथ में उपयोग कर सकता है.
1: बिल्कुल सर.
2: दूसरा, बाजार में जाने में खतरा है वो ध्यान में रखे, क्योंकि जिनसे हमें पैसा लेना है वो हमसे ज्यादा होशियार है.
1: बिल्कुल सर.
2: हाँ, तो वो कुछ ना कुछ तरीके से जो चीज ले लेगा उसका इतना दाम नहीं देता.
1: नहीं दे,
2: किसानों का शोषण वहीं से शुरू
1: हो जाता है. बिल्कुल.
2: वो आप अपना धान बेचने के लिए जाए, मक्का बेचने के लिए जाए, मगर वो तय कर लेता है कि इसका किस दाम में ये ले लेना है.
1: जी.
2: तो अपनी शर्त के ऊपर जैसे मैंने बताया ऐसे बेचे और हो सके तो कुछ चीजों में, जैसे कि आप यूरिया, डीएपी प्रकार के खाद, पेस्टिसाइड, बीज, ऐसी कुछ चीजें हैं जो अगर आप अपने आप बना लेते हैं, यूरिया नहीं बनाए मगर अपनी खाद बना ले, अपना दशपर्णी प्रकार से अर्क जंतुनाशक बना ले, तो इस प्रकार से जितना भी स्वावलंबन हो पाएगा उतना बाजार में जाने की और पैसे देने की जरूरत
1: नहीं होगी। बिल्कुल सही।
2: हाँ, ऐसे ही आम हमारे रोजमर्रा की जीवन में जैसे भी शायद टूथपेस्ट की जरूरत है या नहीं, उस प्रकार से भी सोचा जा सकता है कि सही में किन चीजों की जरूरत है। जैसे कि आज बिस्किट वगैरह भी बहुत गांव में चल, पैक फूड भी बहुत सारा चलने लग गया है।
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसी चीजों से अपने आप को बचाए, उसमें न तो ठीक से पोषण है और स्वास्थ्य के लिए नुकसान करता है कई चीज, तो उसमें तो कैसे हम खर्चा कम करें
1: उस पर जोर दे। बिल्कुल।
2: और बाजार में जब जाए तो कैसे बाजार से ज्यादा पैसे लेके आए, उस प्रकार का बाजार का उपयोग करेंगे तो बाजार हमें काम में आ सकता।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि सर आपने बताया कि हमें जैविक खेती ऐसी करनी है जिससे हमारा कोई शोषण ना कर सके, तो जब जैविक खेती की बात चली है तो सर हम आपसे जैविक खेती के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई ऐसी जैविक खेती करें जिससे उनका किसी भी प्रकार से कोई शोषण ना हो।
2: तो पहली बात बताई कि अपनी जरूरतों को पहले लिस्ट कर दिए, कितना मूंग चाहिए, कितनी दाल चाहिए, कितना मक्का चाहिए, कितना उड़ीद चाहिए, कितनी सब्जी चाहिए, कितना फल चाहिए।
1: जी,
2: हमारे पास इतनी अच्छी जमीन पानी है तो क्यों ना हम सारी चीजों को पहले पैदा कर लें। हम कल यहीं के बागदरा के ही कुछ किसानों को मिल रहे थे, तो बहुत सारे किसान हमें मिले जो अपनी जरूरतों को खुद पैदा कर लेते हैं, हमें इन चीजों को बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं है।
1: बिल्कुल।
2: तो जैविक खेती का पहला सिद्धांत ये है कि

0: या अपने गांव में आसपास के गांवों में उसको भी बेच के थोड़ा सा कमाई कर लेना और अपना ग्राम स्वावलंबन उस दिशा में भी। बिस्किट भी गांव में बन सकते हैं, अच्छे बिस्किट, नागली के बिस्किट या जिसको हम माल बोलते हैं,
1: जी जी जी
0: हाँ, उसका बिस्किट भी बन सकता है
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो अच्छी चीजें सीखे और गांव में इस्तेमाल करे तो हम जैविक कृषि से बाजार तक के संबंध को इस प्रकार से बनाए ताकि प्राकृतिक स्रोतों का रखरखाव सही में हो, आने वाली पीढ़ी को जमीन पानी ठीक से दी जाए और इस पीढ़ी के लिए पैसे भी हमारे पास कुछ ज्यादा आ जाए।
1: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने बहुत अच्छी बातें हमारे किसान भाई बहनों को आप बता रहे हैं, नहीं आप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गांधी स्वराज के विचार के अनुरूप आज की जो खेती है उसमें हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो परिवर्तन क्यों जरूरी है?
0: गांधी जी कहे ये उनका नाम दे या न दे, मगर दुनिया भर के अनुभव तो यही है कि जितनी छोटी इकाई में समूह का संचालन होगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बड़े बड़े शहरों के इसको संभालना उतना आसान नहीं है, वहाँ की जिंदगी इतनी खराब होती जा रही है, हम गांवों को मजबूत करें, यही गांव की सोच है, गांधी जी की सोच है, सही विकास की सोच है।
1: जी सर।
0: जिसको गांधी जी ने ग्राम स्वावलंबन कहा, ग्राम स्वराज कहा, तो हर इकाई अपने आप में एक स्वराज का अनुभव करे, वो काम बहुत बाकी है
1: जी।
0: हम ग्राम सभा को मजबूत करें, इस गांव के फसलों का आयोजन, पशुओं का आयोजन, जमीन पानी, जंगल, बारिश, वाटर मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को गांव साथ में मिलके तय करे कि बारिश का पानी कैसे बाहर जाने से रोक सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जंगलों का उपयोग कैसे सही तरीके से होगा ताकि उसका भी शोषण न हो जाए, जमीनों को कैसे संभालेंगे, अपना खाद गांव कैसे एक साथ में बना सकता है, क्या गांव के सभी पशुओं का चराना एक साथ में हो सकता है या एक इलाकों में उसका हो सकता है क्या
1: जी?
0: या इस प्रकार से कुछ सोच के सामूहिकता लाना और समूह में निर्णय लेना मुझे बहुत जरूरी लगता है।
1: बिल्कुल सर।
0: और साथ साथ में गांवों को दो चीज से मुक्त करने की जरूरत है तो गांव स्वावलंबन की दिशा में आसानी होगी, भ्रष्टाचार से मुक्त हो।
1: बिल्कुल, तभी हम मजबूत होकर अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो जैसा कि सर आपने जो परिवर्तन बताए कि किस तरह से हम हमारी जो परिवर्तन की आवश्यकता है इस तरह से करेंगे तो ये आवश्यकताएं भी पूरी होंगी और हमारा जो गांव है वो गांव का पानी गांव में रहेगा, गांव के बीच गांव में रहेंगे, जंगल नहीं कटेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो जैसा कि सर ये जो परिवर्तन है वो आपने बताया, उसमें किसान को और गांव को क्या करने की जरूरत है जिससे जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आ सके?
0: विज्ञान को ठीक से समझे, बाजार को ठीक से समझे और सामूहिकता बनाए रखें।
1: बिल्कुल सर।
0: और मुझे खास कहना यह है कि गांव के गरीबों की, जिनकी आय कम है, उनकी भी चिंता पहले करें। वो हमारे ग्राम परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा पहले रहा था।
1: जी सर।
0: हाँ, तो उनके बारे में सोचे तो शायद गांव का एक परिवार और गांव स्वावलंबन की दिशा में ठीक से जा पाएंगे। कुछ बिंदु मैंने पहले के अगले सवालों में भी उसके जवाब में बताए।
1: जी सर। तो जैसा कि सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई, तो अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
0: किसान भाई बहन और वाग्धारा के इस रेडियो प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके पास वागड़ रेडियो जैसी एक सर्विस है, वाग्धारा जैसी एक संस्था है। बहुत सारी संस्थाएं इन इलाकों में काम करती है, इन संस्थाओं के हेतु और उद्देश्य को समझते हुए, कार्यकलापों को समझते हुए आप उनको सहयोग दे तो वो अरसपरस बहुत अच्छा काम होगा। आज मैं दो दिन से वाग्धारा के कार्यक्रमों को किसानों को मिल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसानों को बहुत अच्छी तरह से इन मूलभूत बातों को लिए समझाया गया है, उनके दिमाग में वो चीजें बैठी है। महिलाएं भी कह रही है कि हम अपने बच्चों को जहर वाला खाना नहीं खिलाएंगे, बाजार से खरीद के नहीं खिलाएंगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रकार की कोई कार्यक्रम इस बहुत गुजरात से मैं हूँ, गुजरात के नजदीक में ये चल रहा है, आदिवासियों के बीच में चल रहा है, बस आप उन सबको सहयोग देते रहे वही शुभकामना है, वही हमारा कहना है। धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर। सीम के भाई बोनू આપણે જાગૃતિ બોની ઘણી અસલ તરીકા થકી આપણે જે વિશે વિશેષજ્ઞ જોડ્યો તક હતો એના તકી ઘણા કાની વાતે કરી હે તો આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા કેમકી ટાઈમ થઈ ગયો હે અમારે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટો પડવાનું તો સૂટો તો પડા પણ સાથે પહેલા હામરી લેક ઓર ગીતને મોરે પડા સૂટા

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
6: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
5: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
6: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
5: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
6: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात ने शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों को विज्ञापनों के प्रभाव से कैसे बचाएं।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, आज का बच्चा पहले की तुलना में कहीं अधिक जानकारी से घिरा हुआ है। पहले बच्चे केवल कुछ समय के लिए टीवी देखते थे, लेकिन आज बच्चे मोबाइल फोन, इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, शॉपिंग ऐप और कई डिजिटल माध्यम उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं।
0: बिल्कुल,
1: इन सभी माध्यमों पर लगातार ऐसे विज्ञापन दिखाई देते हैं कशिश, जो बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रंग बिरंगे दृश्य, तेज संगीत, कार्टून पात्र, सुपर हीरो, खिलौने, चॉकलेट, चिप्स, मीठे पे, महंगे कपड़े और नए नए गैजेट्स बच्चों को बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं।
0: जी हाँ,
1: तो आज कार्यक्रम में हम यही जानने वाले हैं कि बच्चों को हम विज्ञापनों के प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो बातें आज के इस कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए साथियों को हम कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं, बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों को विज्ञापनों के प्रभाव से कैसे बचाया जाए।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी, बच्चों का मन बहुत ही सरल और जिज्ञासु होता है। वे जो देखते हैं उसे सच मान लेते हैं। श्रोता साथियों, उन्हें यह समझ नहीं होती है कि विज्ञापन का उद्देश्य किसी वस्तु को बेचने के लिए लोगों को आकर्षित करना होता है। कई बार विज्ञापन किसी वस्तु को इतना आकर्षक बना देते हैं अंजलि जी कि बच्चे उसे अपनी जरूरत समझने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जबकि वास्तव में वह केवल उनकी इच्छा होती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आजकल कई बच्चे किसी चीज की आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि विज्ञापन देखकर उसे खरीदने की जिद करने लगते हैं।
1: जी हाँ,
0: कभी नया खिलौना, कभी नया मोबाइल गेम, कभी पैकेट वाला नाश्ता या कोई महंगा उत्पाद। यदि उनकी बात पूरी न हो तो वे नाराज हो जाते हैं या उदास महसूस करने लगते हैं। और धीरे धीरे ये आदत उनके स्वभाव का हिस्सा बन सकती है।
1: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि खाने पीने की चीजों के विज्ञापन बच्चों को बहुत प्रभावित करते हैं। टीवी और मोबाइल पर बार बार दिखाई देने वाले चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, कैंडी, नूडल्स और अन्य पैकेट्स वाले खाद्य पदार्थ बच्चों को अधिक आकर्षित करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे इन्हें स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक समझने लगते हैं, जबकि इनका अत्यधिक सेवन उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: परिणाम स्वरूप बच्चे घर के पौष्टिक भोजन से दूरी बनाने लगते हैं। कहना चाहेंगे कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि विज्ञापनों का असर केवल खानपान तक सीमित नहीं रहता। कई बार बच्चे महंगे कपड़े, जूते, खिलौने या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपनी पहचान का हिस्सा मानने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे उनमें तुलना की भावना बढ़ सकती है। यदि किसी दोस्त के पास कोई नई चीज हो कशिश, तो वे भी वैसी ही चीज पाने की इच्छा करने लगते हैं। इससे संतोष की भावना कम होती है और अनावश्यक इच्छाएं बढ़ने लगती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही अगर बात करें तो श्रोता साथियों, ऑनलाइन गेम और मोबाइल एप्स में आने वाले विज्ञापन भी बच्चों को प्रभावित करते हैं। कई बार तो साथियों, वे किसी गेम में आगे बढ़ने के लिए पैसे खर्च करने या नई चीजें खरीदने की इच्छा करने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बिना समझ के किए गए ऐसे निर्णय अंजलि जी आर्थिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं होते। दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका हमारी यानी कि माता पिता की होती है। बच्चों की हर जिद पूरी करना प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम उन्हें सही और गलत का अंतर समझाने में है। साथियों,
1: जी हाँ,
0: यदि बच्चा किसी विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई वस्तु मांगे तो उसे डांटने के बजाय शांति से आप समझाएं कि हर चमकने वाली चीज उपयोगी नहीं होती। उन्हें आप ये बताएं कि विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना है, इसलिए हर दावा वास्तविक नहीं होता।
1: जी हाँ कशिश, परिवार को बच्चों के साथ बैठकर टीवी देखना चाहिए और समय समय पर विज्ञापनों के बारे में सरल भाषा में चर्चा करनी चाहिए। बच्चों से पूछें कि उन्हें विज्ञापन में क्या अच्छा लगा, क्या वास्तव में उसकी आवश्यकता है। इस प्रकार के बच्चे धीरे धीरे सोच समझकर निर्णय लेना सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों का स्क्रीन टाइम भी सीमित होना चाहिए। जितना अधिक समय वे मोबाइल और टीवी के सामने बिताएंगे, उतना ही अधिक विज्ञापनों के संपर्क में आएंगे। यदि उनके समय का एक हिस्सा खेल, किताबों, चित्रकला, संगीत, बागवानी या परिवार के साथ बातचीत में बीतेगा, तो उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से रचनात्मक गतिविधियों की ओर चला जाएगा।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हम बातें कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि विद्यालयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, कि शिक्षकों को बच्चों को यह समझाना चाहिए कि विज्ञापन और वास्तविकता में अंतर होता है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों में तार्किक सोच विकसित करनी आवश्यक है ताकि वे हर दिखाई देने वाली बात पर तुरंत विश्वास न करें।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब मोबाइल और इंटरनेट तेजी से पहुंच रहे हैं, इसलिए गांवों के परिवारों को भी जागरूक रहना होगा। बच्चों को यह सिखाना होगा कि सादा जीवन, पौष्टिक भोजन, मेहनत, ईमानदारी और संतोष का कोई विज्ञापन नहीं होता, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: जी हाँ।
0: यह भी आवश्यक है कशिश कि माता पिता स्वयं भी अनावश्यक खरीदारी से बचें। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। यदि परिवार हर नई चीज देखकर उसे खरीदने की आदत बना ले तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार अपनाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि परिवार आवश्यकता और इच्छा का अंतर समझकर निर्णय लेगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि विज्ञापन अपने आप में बुरे नहीं होते, वे हमें नई जानकारी भी देते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझना आवश्यक है कि हर विज्ञापन का उद्देश्य किसी वस्तु या सेवा की ओर आकर्षित करना होता है। सही जानकारी, परिवार का मार्गदर्शन, सीमित स्क्रीन टाइम और अच्छे संस्कार बच्चों को विज्ञापनों के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चे सोच समझ कर निर्णय लेना सीख जाते हैं कशिश, तब वे केवल अच्छे उपभोक्ता ही नहीं बल्कि जागरूक, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से साथियों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आज के समय में बच्चों का बचपन केवल घर, स्कूल या खेल के मैदान तक सीमित नहीं रह गया है। डिजिटल दुनिया ने उनके अनुभवों का दायरा बहुत बड़ा कर दिया है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि हम बच्चों को केवल तकनीक का उपयोग करना ही न सिखाएं, बल्कि उसका सही उपयोग और समझदारी से उपयोग करना भी सिखाएं।
0: जी हाँ
1: अंजलि जी, विज्ञापनों से पूरी तरह बच पाना संभव नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव को समझना और सही निर्णय लेना अवश्य सिखाया जा सकता है बच्चों को। यही समझ बच्चों को भविष्य में आत्मनिर्भर और विवेकशील बनाती है दोस्तों। साथ ही हमारे बच्चों को ये भी समझाने की जरूरत है कि किसी वस्तु का मूल्य उसके आकर्षक पैकेट, चमकदार प्रचार या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रचार करने से नहीं होता।
0: जी जी।
1: किसी भी वस्तु की वास्तविक उपयोगिता, उसकी गुणवत्ता और उसकी आवश्यकता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है साथियों। यदि बच्चे छोटी उम्र से ही जरूरत और चाहत के बीच का अंतर समझना सीख जाएंगे तो वे आगे चलकर अनावश्यक खर्च, दिखावे की प्रवृत्ति और दूसरों से तुलना करने जैसी आदतों से भी बच सकते हैं। अंजलि जी
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि माता पिता, शिक्षक और परिवार के अन्य सदस्य बच्चों के पहले मार्गदर्शक होते हैं। यदि घर का वातावरण संवाद, विश्वास और समझ से भरा होगा कशिश, तो बच्चे अपनी हर जिज्ञासा और इच्छा खुलकर साझा करेंगे। इससे उन्हें सही दिशा देना आसान होगा। बच्चों की बात सुनना, उसकी भावनाओं को समझना और उन्हें सोचने समझने के लिए प्रेरित करना किसी भी रोक टोक से अधिक प्रभावी तरीका है।
1: जी हाँ।
0: जब बच्चे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तब श्रोता साथियों उनमें जिम्मेदारी और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: समाज की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कशिश, कि विद्यालय, आंगनबाड़ी और स्थानीय संस्थाएं यदि समय समय पर मीडिया साक्षरता, संतुलित जीवन शैली और जागरूक उपभोक्ता बनने जैसे विषयों पर चर्चा करे तो बच्चे और अभिभावक दोनों अधिक सजग बन सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जागरूकता ही वह शक्ति है श्रोता साथियों जो गलत प्रभावों से बचाने का सबसे प्रभावी साधन बनती है। हमें ये भी याद रखना होगा कि बच्चों को सबसे अधिक खुशी महंगी चीजों से नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए समय, खुलकर खेलने के अवसर, अच्छी कहानियों, रचनात्मक गतिविधियों और अपनेपन से मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम उनके जीवन में इन अनुभवों को बढ़ाएंगे तो चमकदार विज्ञापनों का आकर्षण अपने आप कम होने लगेगा। बच्चों का आत्मविश्वास किसी ब्रांड से नहीं बल्कि उनके संस्कार, ज्ञान, कौशल और परिवार के सहयोग से बनता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथियों हम अपने बच्चों को केवल समझदार उपभोक्ता नहीं बल्कि जागरूक, विवेकशील और मूल्यनिष्ठ नागरिक बनाने का संकल्प ले सकते हैं। उन्हें यह सिखाएं साथियों कि जीवन की सबसे अनमोल चीजें बाहर नहीं मिलती, वे परिवार के प्रेम, अच्छे संस्कार, स्वस्थ आदतें, ईमानदारी, मेहनत और सही सोच से मिलती है। अंजलि जी, जब बच्चे हर चमकती हुई चीज के पीछे भागने के बजाय सोच समझ कर निर्णय लेना सीख जाएंगे
0: जी जी,
1: तभी वे अपने जीवन के सही रास्ते चुनते हैं और यही सीख उन्हें आत्मनिर्भर, संतुलित, जिम्मेदार इंसान बनाती है।
0: बिल्कुल।
1: और यही एक मजबूत परिवार, जागरूक समाज और उज्जवल भविष्य की सबसे सच्ची पहचान है।
0: जी हाँ। तो कशिश, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरीके से हम बच्चों को विज्ञापनों के प्रभाव से बचा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ दिलीप जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जीवन में आनंदित रहने की गुंजाइश हमेशा रखें। श्रोताओं, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सफलता, पैसा, नाम और पहचान पाने की दौड़ में लगा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कशिश, इस दौड़ में सबसे ज्यादा अगर कुछ पीछे छूट रहा है तो वो है जीवन का आनंद। हम खुशियाँ भविष्य की किसी बड़े लक्ष्य से जोड़ देते हैं, जबकि असली खुशी तो हमारे आज में है, हमारे व्यवहार में है और हमारी सोच में छिपी होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे हमारे श्रोता साथियों से।
0: जी हाँ जागृति जी, तो बातें जरूर होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना जरूरी है और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी दस्तूर को निभाते हुए युवा साथियों पहले मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ में।
1: जी हाँ,
0: आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, जीवन में आनंदित रहने की गुंजाइश हमेशा हमें रखनी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि गीत से पहले आपने बताया था जागृति जी कि हम हमारे जीवन के आनंद को कई बार बड़े लक्ष्यों से जोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जबकि असली खुशी तो श्रोता साथियों हमारे वर्तमान जीने में है। ऐसे में अगर हम बात करें कि आनंद का वास्तविक मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आनंद का मतलब केवल हंसना या मौज मस्ती करना नहीं होता। आनंद एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति जागृति जी परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो फिर भी उम्मीद और संतुलन बनाए रखता है। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती है श्रोता साथियों, किसी को पढ़ाई की चिंता होती है तो किसी को नौकरी की, तो किसी को परिवार की और किसी की भविष्य की भी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना सीखा है वही जीवन का वास्तविक आनंद ले पाए हैं।
1: जी हाँ, इसीलिए हमें समझना होगा कि आनंद किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होता है।
0: जी हाँ
1: कशिश, हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करते रहते हैं। जब नौकरी मिलेगी तब खुश हो जाएंगे, जब अपना घर होगा तब खुश हो जाएंगे, जब सारी समस्याएं खत्म होगी तब आनंद मिलेगा।
0: जी जी।
1: लेकिन श्रोताओं, सच तो ये है कि जीवन की सबसे सुंदर खुशियां छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। सुबह की ताजी हवा, परिवार के साथ बैठकर भोजन करना, दोस्त की एक सच्ची मुस्कान, किसी की मदद करके मिलने वाली दुआ, प्रकृति की सुंदरता, ये सभी ऐसे पल हैं जो बिना किसी खर्च के हमें आनंद दे सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: जो व्यक्ति इन छोटी छोटी खुशियों की कदर करता है कशिश, उसका जीवन हमेशा समृद्ध रहता है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथी श्रोता साथियों, वर्तमान में जीने की कला को समझना भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे कि बहुत से लोग हमने देखे हैं जागृति जी, जो अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं। कुछ लोग भविष्य की चिंता में आज को खो देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे पास केवल वर्तमान ही है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख जाएं साथियों, तो तनाव अपने आप ही कम होने लगता है।
1: जी हाँ,
0: आज का एक अच्छा दिन कल की अच्छी यादें बन जाता है श्रोता साथियों, इसलिए वर्तमान को बोझ नहीं बल्कि अवसर आपको समझना है।
1: बिल्कुल कशिश, आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम समझने लगते हैं। कोई महंगी गाड़ी दिखाता है, कोई विदेश यात्रा की तस्वीर डालते हैं, कोई अपनी उपलब्धियां साझा करते हैं, लेकिन साथियों हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल,
1: तुलना करने से आत्मविश्वास हमारे अंदर ही कम होता है और आनंद भी हमारे अंदर समाप्त होने लगता है। इसलिए अपनी तुलना केवल अपने कल से कीजिए, यदि आज हम कल से बेहतर हैं तो यही हमारी सफलता है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही इसमें सकारात्मक सोच का भी महत्व होता है। जैसे कि सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है साथियों कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि हम समस्याओं का सामना हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ करें।
1: बिल्कुल,
0: हर कठिनाइयां हमें कुछ नया सिखाने आती है जागृति जी, हर असफलता हमें आगे बढ़ने की तैयारी कराती है साथियों। ऐसे में जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख को खोज लेता है वह कभी निराश नहीं होता।
1: जी हाँ, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि जीवन में आनंद होने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की गुंजाइश हमारे अंदर जिंदा होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें हम निरंतर आज के इस कार्यक्रम में जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जीवन में आनंदित रहने की गुंजाइश हमेशा जिंदा रखनी चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की थी। यही हम जानते हैं कि श्रोताओं, हम अक्सर उन चीजों की चिंता करते हैं जो हमारे पास नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कभी उन चीजों के लिए धन्यवाद नहीं देते जो हमारे पास है। एक परिवार, अच्छे मित्र, स्वस्थ शरीर, शिक्षा, जीवन जीने का अवसर, ये हमें प्रतिदिन इन बातों के लिए ईश्वर और जीवन को धन्यवाद करना होगा, तो हमारे भीतर संतोष और आनंद दोनों

0: चीजें हैं उन्हें हमें समय देना होगा। जैसे कि हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, किसी को संगीत पसंद होता है, किसी को चित्रकारी पसंद होती है, किसी को लेखन, किसी को बागवानी और किसी को खेल। जब हम अपनी रुचियों के लिए समय निकालते हैं कशिश, तब मन को नई ऊर्जा मिलती है। इसीलिए केवल काम ही जीवन नहीं, जीवन में शौक भी उतने ही जरूरी होते हैं।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ साथियों, आप सभी ने सुना ही होगा कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। ये कहा जाता है कि खुशी एक दौलत है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी उदास व्यक्ति को हौसला देना, किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग करना या किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, श्रोता साथियों, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो हमारे भीतर गहरा संतोष पैदा करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और देखा जाए जागृति जी तो यही सच्चा आनंद है।
0: जी हाँ कशिश, हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आज हमारे सामने अवसर भी बहुत है और चुनौतियां भी बहुत है।
1: बिल्कुल,
0: प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है, लेकिन याद रखिए सफल वही है जो अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। अपने सपनों का पीछा जरूर कीजिए, लेकिन अपनी मुस्कान की कीमत पर नहीं।
1: जी हाँ,
0: काम कीजिए, सीखते रहिए, असफलताओं से घबराइए मत, और हर दिन अपने लिए कुछ ऐसे पल जरूर निकालिए जो आपको भीतर से खुशी दे। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं आनंदित रहता है वही अपने परिवार और समाज, देश में सकारात्मक ऊर्जा फैला सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि श्रोता साथियों, हमारा जीवन अनमोल है, इसे केवल जिम्मेदारी और चिंताओं में मत बिताइए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, स्वयं का सम्मान कीजिए साथियों, और दूसरों के जीवन में भी खुशियों का कारण बनिए। याद रखिए कि आनंद कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जो हर परिस्थिति में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेता है। जागृति जी, वही वास्तव में समृद्ध और सफल कहलाता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि आनंदित रहना केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक कला भी है। परिस्थितियाँ हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती है श्रोताओं, लेकिन उनका सामना मुस्कुराकर करना हमारे हाथ में ही होता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को पहचानता है, कृतज्ञता के भाव को रखता है, दूसरों के जीवन में भी मुस्कान बांटता है, वही वास्तव में सफल और समृद्ध जीवन जीता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमें ये याद रखना होगा श्रोताओं कि धन, पद और प्रसिद्धि तभी सार्थक है जब मन प्रसन्न हो। इसलिए हमें अपने परिवार, मित्र, प्रकृति और समाज के साथ मधुर संबंध बनाने होंगे, अच्छी सोच को अपनाना होगा। जब हम स्वयं खुश रहते हैं तभी दूसरों को भी खुश रहने की प्रेरणा दे सकते हैं। इसीलिए याद रखिए श्रोता साथियों, खुशी मंजिल से नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका है। जो मुस्कुराना सीख लेता है वह हर कठिनाई में उम्मीद की नई किरण भी खोज लेता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि जीवन हमें केवल जीने के लिए नहीं बल्कि हर पल को महसूस करने और उसका आनंद लेने के लिए मिला है। दोस्तों, सुख और दुख, सफलता और असफलता, जीत और हार, ये सभी जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं। यदि हम हर कठिनाई के कारण अपनी मुस्कान खो देंगे तो जीवन का सबसे सुंदर पक्ष हमसे दूर हो जाएगा साथियों।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जरूरी है कि हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर खुश रहना सीखें।
0: जी हाँ, इसलिए कशिश हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आनंद वही जो मन को उजियारा दे, हर दुख में भी जीने का सहारा दे, धन दौलत से बढ़कर इसकी पहचान है, आनंद में जीवन ही सच्चा वरदान है।
1: बिल्कुल,
0: मुस्कानों से अपना संसार सजाए, प्रेम करुणा और सद्भाव बढ़ाए, आनंद की ज्योति हर दिल में जलाए, खुश रहकर खुशियों का संदेश फैलाए। श्रोता साथियों, आनंद जीवन का सबसे अनमोल धन है और ये बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे विचारों, संतोष, प्रेम और सेवा के भाव में ही बसता है। जिस व्यक्ति ने आनंद को अपना साथी बना लिया उसके लिए हर दिन एक नई उम्मीद और हर पल एक नया उत्सव बन जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी रही और हमने जाना कि किस प्रकार से जीवन को हमें आनंद से जीना है और जो आनंदित रहने की जो गुंजाइश होती है उसे हमें कैसे बनाकर रखना है।
0: बिल्कुल,
1: तो बातें जैसा कि पूरी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं दोस्तों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं आदिवासी ज्ञान और प्रकृति से सीखने की संस्कृति को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जब आधुनिक दुनिया विकास की दौड़ में प्रकृति से दूर होती जा रही थी, तब आदिवासी समाज हमें ये सिखाता है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी गुरु है। जंगल उनका विद्यालय है, नदियाँ उनकी पाठशाला है, पर्वत उनके शिक्षक है, ऋतुएं उनकी जीवन पुस्तक है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, आदिवासी ज्ञान हमें ये बताता है कि प्रकृति पर अधिकार नहीं बल्कि उसके साथ संतुलित और सम्मानजनक जीवन ही सच्ची प्रगति है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। तो साथियों आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज पे। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बातें भी रही थी कि आज हमारा विषय रहने वाला है आपसे बातचीत का आदिवासी संस्कृति प्रकृति से सीखने की अनमोल परंपरा को लेकर।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, बात करें तो भारत की आत्मा गांव में बसती है, जैसा कि हम हमेशा कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो उसकी सबसे प्राचीन और जीवन संस्कृति आदिवासी समाज में बसती है। श्रोता साथियों, राजस्थान का वागड़ अंचल, जिसमें मुख्य रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले आते हैं, यह जो दो जिले हैं वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों, नदियों, घने वनों और समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं।
0: जी हाँ,
1: यहाँ किसान, यहाँ निवास करने वाली भील, गरासिया, डामोर, कंथोड़ी जैसी जनजातियाँ सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन जीती आई है। इनके लिए जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं है जागृति जी, बल्कि जीवन का आधार है।
0: बिल्कुल,
1: नदी केवल जल नहीं बल्कि संस्कृति की धारा है, और धरती केवल भूमि नहीं बल्कि माता भी है। आज जब पूरी दुनिया श्रोता साथियों जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब आदिवासी संस्कृति हमें प्रकृति के साथ संतुलित जीवन की प्रेरणा देती है।
0: बिल्कुल,
1: यह संस्कृति हमें बताती है कि विकास का वास्तविक अर्थ प्रकृति को नष्ट करना नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि वागड़ की सांस्कृतिक पहचान को लेकर हम बात करें हमारे श्रोता साथियों से, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को सामूहिक रूप से वागड़ क्षेत्र कहा जाता है।
1: जी जी।
0: माही नदी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, हरियाली और वन इस क्षेत्र की पहचान है। यहाँ की संस्कृति में सादगी है, मेहनत, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक जीवन की भावना स्पष्ट दिखाई देती है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ के लोग अपने पारंपरिक पहनावे, लोकगीतों, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, चित्रकला और लोक भाषा के माध्यम से अपने सांस्कृतिक विरासत को आज भी जीवित रखे हुए हैं। आधुनिकता के प्रभाव के बावजूद अपनी परंपराओं को संभाले रखना इस समाज की सबसे बड़ी विशेषता रही है।
1: जी हाँ जागृति जी, आदिवासी समाज प्रकृति को गुरु मानता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, वर्षा और ऋतुएं उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वे प्रकृति से धैर्य, संतुलन, सहयोग और अनुशासन सीखते हैं। श्रोता साथियों, पेड़ काटने से पहले नए पौधे लगाने की परंपरा, जल स्रोतों की सफाई, जंगलों की रक्षा और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील व्यवहार उनके जीवन दर्शन को दर्शाता है। वे उतना ही लेते हैं जितनी आवश्यकता हो,
0: बिल्कुल
1: शेष प्रकृति के लिए छोड़ देते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आदिवासी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी जल, जंगल और जमीन है। जंगल हमारे आदिवासी भाई बहनों को भोजन, फल, फूल, औषधियां, लकड़ी और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाते हैं। खेत हमारी आजीविका का आधार है, जबकि नदियां हमारे जीवन को ऊर्जा देती है।
1: बिल्कुल,
0: माही नदी तथा उसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र की संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों को समृद्ध बनाया है। जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग की परंपरा आज भी समाज की विशेष पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि वागड़ क्षेत्र के आदिवासी किसान प्राकृतिक खेती को महत्व देते हैं। वे जैविक खाद, गोबर की खाद और स्थानीय बीजों का उपयोग करते हैं। मिश्रित खेती, वर्षा आधारित कृषि और स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण उनकी खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं।
0: बिल्कुल,
1: कम संसाधन में अधिक उत्पादन करने की उनकी कला आज के टिकाऊ विकास मॉडल के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर की पहचान उनके लोक नृत्यों और लोकगीतों से भी है। गेर, गवरी और पारंपरिक भीली नृत्य केवल मनोरंजन नहीं है जागृति जी, बल्कि सामाजिक एकता, प्रकृति के प्रति आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक भी
0: जी
1: है। ढोल, मादल, थाली, बांसुरी की मधुर धुनों पर सामूहिक नृत्य समाज में प्रेम, भाईचारे, उत्साह का संचार करते हैं। लोकगीतों में प्रकृति, खेती, वर्षा, परिवार और सामाजिक जीवन का सुंदर चित्रण भी हमें देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज किस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आदिवासी ज्ञान और प्रकृति से सीखने की संस्कृति को लेकर, तो ये बातें निरंतर आज किस कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से लोक कला, लोक गीत और लोक नृत्य भी हमारे वागड़ क्षेत्र की पहचान है। श्रोता साथियों, वागड़ क्षेत्र में बेणेश्वर धाम का मेला विशेष महत्व रखता है, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। इसके अलावा होली, दीपावली, गवरी, नवाई और अन्य स्थानीय पर्व सामूहिक उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर जागृति जी लोग प्रकृति, पूर्वजों और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, ये तो आपने मेले और त्योहारों के बारे में बताया कि किस तरह के मेले हमारे वागड़ क्षेत्र में लगते हैं और त्योहार का क्या महत्व है। यही पारंपरिक औषधीय ज्ञान के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताए तो श्रोताओं, आदिवासी समाज के पास जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान है। अनेक औषधीय पौधों की पहचान, उनका उपयोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव के आधार पर आगे बढ़ता आया है और आधुनिक विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं अंजलि कि आदिवासी समाज में हम की भावना मैं से अधिक महत्वपूर्ण है। खेती, घर निर्माण, सामाजिक कार्य और उत्सव सभी मिलजुल कर किए जाते हैं। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना हमारे आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। ये सामुदायिक भावना आज के समाज के लिए भी प्रेरणा है, जहाँ व्यक्तिगत जीवन शैली बढ़ती जा रही है।
0: जी हाँ जागृति जी, यहाँ पर शिक्षा, रोजगार, पलायन, जंगलों का घटता क्षेत्र, पारंपरिक ज्ञान का लुप्त होना और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव आदिवासी संस्कृति के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है।
1: बिल्कुल,
0: नई पीढ़ी यदि अपनी भाषा, लोकगीत, लोक नृत्य और परंपराओं से दूर होती गई श्रोता साथियों, तो यह अमूल्य धरोहर कमजोर पड़ सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विकास के साथ साथ सांस्कृतिक संरक्षण भी समान रूप से ध्यान दिए जाए। आज के युवाओं की जिम्मेदारी है कि जागृति जी, वे अपनी संस्कृति पर गर्व करें, लोक कला, लोक भाषा को आगे बढ़ाएं, पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं और आधुनिक शिक्षा के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहें।
1: बिल्कुल,
0: यही सच्चा विकास होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर की आदिवासी संस्कृति केवल एक समुदाय की पहचान नहीं है, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक समृद्धि की अमूल्य धरोहर है।
0: बिल्कुल,
1: ये संस्कृति हमें ये सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान, सामुदायिक सहयोग, सादगी, आत्मनिर्भरता और संतुलित जीवन ही मानवता का वास्तविक मार्ग है। आज आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम आदिवासी समाज को केवल विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात न करें, बल्कि उन प्रकृति आधारित जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण की भावना और पारंपरिक ज्ञान से भी सीखें। अगर हम उनकी इस अनमोल विरासत को सुरक्षित रख पाए तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ, पर्यावरण समृद्ध, संस्कृति और मानवीय मूल्यों से भरपूर भारत का निर्माण कर सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आदिवासी संस्कृति हमें यह संदेश देती है कि धरती हमारे पूर्वजों की संपत्ति नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की अमानत है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें इस महान सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेकर प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। यह हमारी संस्कृति का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा और सच्चे विकास की दिशा है।
1: जी हाँ, हम कह सकते हैं कि आदिवासी संस्कृति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित, संवेदनशील और आत्मनिर्भर जीवन का जीवन दर्शन है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, इस संस्कृति ने सदियों से ये सिद्ध किया है कि सच्ची समृद्धि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन में नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और सम्मान में निहित है। जल, जंगल और जमीन के प्रति हमारे आदिवासी समाज का प्रेम, सामुदायिक सहयोग की भावना, लोक ज्ञान, लोक कला और प्रकृति से सीखने की परंपरा आज भी मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्रोताओं, आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक विघटन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब हमारे वागड़ की आदिवासी संस्कृति हमें एक नई दिशा दिखाती है। अंजलि, ये संस्कृति हमें सिखाती है कि विकास तभी सार्थक है जब उसमें प्रकृति का संरक्षण, संस्कृति का सम्मान और समाज का कल्याण शामिल हो। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस अमूल्य धरोहर को केवल संग्रहालयों तक सीमित न रखें, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, नई पीढ़ी तक पहुंचाएं और गर्व के साथ इसका संरक्षण करें।
0: बिल्कुल जागृति जी, आदिवासी ज्ञान केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा है। यदि मानवता को सुरक्षित, संतुलित और टिकाऊ विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए तो हमें आदिवासी समाज से प्रकृति के साथ सामंजस्य, संयम और सह अस्तित्व की संस्कृति सीखनी होगी। प्रकृति से सीखना ही जीवन को बचाना है और यही सच्चे विकास की पहचान है।
1: जी हाँ, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आदिवासी संस्कृति, ज्ञान और प्रकृति के बारे में बातचीत की, अब देख पा रहे हैं कि समय का मान रखना होगा। समय का मान रखते हुए इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं अंजलि, और आशा करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारे श्रोता साथियों को जरूर पसंद आई होंगी।
1: हाँ।
0: श्रोताओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाग्र रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमें अधिक जानकारी के लिए हमारी ईमेल आईडी पर भी आपकी प्रतिक्रिया दे सकते हो। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है गांव की जीवन शैली का हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव को लेकर।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज जब हम शहरों में तनाव, प्रदूषण, अनियमित खान पान और भागदौड़ भरी जिंदगी लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है ये देखते हैं, वहीं गांव की सरल, प्राकृतिक और संतुलित जीवन शैली आज भी स्वस्थ जीवन का एक बड़ा उदाहरण मानी जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग बिना जिम जाए भी इतने मजबूत कैसे रहते हैं? क्यों गांव के लोग पहले कम बीमार पड़ते थे? आखिर गांव की जीवन शैली में ऐसा क्या है श्रोता साथियों जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहता है? तो आज कार्यक्रम में इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी।
0: जी हाँ।
1: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत।
0: तो श्रोता साथियों, आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं गांव की जीवन शैली का हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि भारत को गांव का देश कहा जाता है। आज भी देश की बड़ी आबादी श्रोता साथियों गांव में निवास करती है। गांव केवल रहने का स्थान नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति का सुंदर संगम है।
1: बिल्कुल,
0: गांव का वातावरण स्वच्छ, शांत और प्राकृतिक होता है। श्रोता साथियों, यहां की जीवन शैली सरल, संतुलित और प्रकृति के अनुरूप होती है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और प्रदूषण से दूर गांव का जीवन मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, गांव का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है।
0: जी हाँ,
1: सुबह सूरज निकलने से पहले जागना, ताजी हवा में घूमना, खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल करना और दिन भर शारीरिक श्रम करना, ये सब ऐसी आदतें हैं श्रोता साथियों जो बिना किसी अतिरिक्त खर्च के शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। शहरों में लोग घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, जबकि गांव में दैनिक कार्य ही शरीर के लिए प्राकृतिक व्यायाम बन जाते हैं। गांव में आज भी कई स्थानों पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं।
0: जी हाँ,
1: हरी भरी फसलें, खुले मैदान, कम प्रदूषण और ताजी हवा शरीर को भरपूर ऑक्सीजन देती है।
0: जी हाँ,
1: शुद्ध हवा से फेफड़े मजबूत रहते हैं, सांस संबंधित बीमारियां कम होती है, मानसिक तनाव घटता है, नींद अच्छी आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगी सुबह की खुली हवा में कुछ देर टहलना किसी दवा से कम नहीं माना जाता।
0: जी हाँ,
1: गांव का भोजन अक्सर हम देखते हैं कि ताजा और मौसम के अनुसार घर पर बना होता है, जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, गेहूं, दालें, हरी सब्जियां, छाछ, दही, दूध, घी, गुड़, तेल, मूंगफली। श्रोता साथियों, इनमें विटामिन, खनिज, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसके विपरीत पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों को स्वाभाविक रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल करना, पैदल चलना, पानी भरना, बागवानी करना और घरेलू कार्य करना उनके जीवन का हिस्सा होते हैं। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि यह श्रम किसी व्यायाम से कम नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: इससे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां स्वस्थ रहती हैं और रक्त संचार वो बेहतर रहता है।
1: बिल्कुल,
0: नियमित शारीरिक गतिविधियों से श्रोता साथियों मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी समस्या होती है वो भी नहीं होती है।
1: जी हाँ मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि गांव के लोग खेतों में काम करते हैं।
0: जी,
1: चलना, झुकना, उठना, पशु की सेवा करना, पानी भरना, लकड़ी लाना, ये सब शरीर को सक्रिय रखते हैं। ऐसे लोग मोटापे से कम प्रभावित होते हैं, मधुमेह का खतरा कम रहता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हड्डियां मजबूत रहती है। इसी के साथ गांव में अभी भी बहुत से लोग सूर्योदय के साथ जागते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये आदत शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित रखती है। समय पर सोने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आंखों को आराम मिलता है, शरीर की मरम्मत अच्छी तरह होती है और थकान भी कम होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले मनीषा हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि गांव की जीवन शैली का हमारे स्वास्थ्य पर किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि गांव में लोगों के बीच आपसी मेलजोल अधिक होता है।
1: जी हाँ।
0: किसी के घर खुशी हो या दुख, पूरा गांव साथ खड़ा होकर रहता है। यह सामाजिक सहयोग तनाव को कम करता है, बुजुर्गों के अनुभव, परिवार का साथ और सामूहिक जीवन मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: गांव में कई घरेलू उपाय पीढ़ियों से अपनाए जा रहे हैं मनीषा, जैसे कि हल्दी वाला दूध, तुलसी, अदरक, नीम, गिलोय, एलोवेरा, अजवाइन, सौंफ। हालांकि गंभीर बीमारियां होने पर डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा जरूरी होता है। गांव में बच्चों को खुला मैदान मिलता है, वे दौड़ते हैं, खेलते हैं, मिट्टी से जुड़ते हैं, पेड़ों के बीच समय बिताते हैं। इससे शरीर मजबूत बनता है, आंखों पर मोबाइल का कम असर पड़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सामाजिक व्यवहार भी विकसित होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें कि मानसिक स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि गांव का शांत वातावरण मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। वहाँ शोर शराबा कम होता है, प्रदूषण कम होता है और प्राकृतिक सुंदरता अधिक होती है।
0: बिल्कुल,
1: पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाट, खेतों की ताजगी और स्वच्छ वातावरण मन को सुकून देते हैं। श्रोता साथियों, इससे हम देखते हैं कि हमारे अंदर का तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं वो खत्म होने लगती हैं।
0: बिल्कुल,
1: परिवार और समाज का सहयोग है श्रोता साथियों, वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है।
0: बिल्कुल मनीषा, गांव में बुजुर्ग अक्सर सक्रिय रहते हैं, वे खेती, पशुपालन, बागवानी और घरेलू कार्यों में भाग लेते रहते हैं। सक्रिय जीवन उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद करता है। गांव में मौसम के अनुसार भोजन किया जाता है, गर्मी में छाछ, बेल, ककड़ी, तरबूज, बरसात में बाजरे की राब, दालें और गर्म भोजन, सर्दियों में तिल, गुड़, गोंद के लड्डू, मेथी, सरसों का साग, मौसमी भोजन शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव में लोग मिलकर खेतों में काम करते हैं। तालाब साफ करना, पौधा रोपण, गांव की सफाई, त्योहार मनाना, ये गतिविधियां सामाजिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करती हैं।
1: जी हाँ,
0: हालांकि गांव में भी अब कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं मनीषा। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे जंक फूड की ओर बढ़ रहे हैं, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, शारीरिक श्रम जो है हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे गांव में भी कम होता दिखाई दे रहा है, प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है और देर रात तक जागने की आदत बन रही है। यदि इन आदतों में नहीं बदलाव किया गया तो गांव भी शहरों जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकता है। हमें ये करना है श्रोता साथियों कि हम प्रतिदिन सुबह जल्दी उठें, कम से कम 30 मिनट पैदल चले, मोटे अनाज को भोजन में शामिल करें, घर का ताजा भोजन खाएं, बच्चों को खुले मैदान में खेलने दें, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, पर्याप्त पानी पिएं, समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं, योग और प्राणायाम को अपनाएं, नशे से दूर रहें और गांव की पारंपरिक अच्छी आदतों को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, स्वस्थ जीवन केवल दवाइयों से नहीं बनता बल्कि अच्छी आदतों से बनता है। गांव की संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ चलने वाला जीवन ही सबसे संतुलित जीवन है। यदि हम आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए गांव की अच्छी परंपराओं को अपनाए रखें तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और खुशहाल समाज दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गांव में लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। सामूहिक सहयोग, भाईचारा, श्रोता साथियों, ये सभी होते हुए गांव की पहचान होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: सामाजिक जुड़ाव व्यक्ति को अकेलेपन से बचाता है, परिवार और समाज का भावनात्मक सहयोग मानसिक मजबूती के लिए उपयोगी होता है। साथ ही श्रोता साथियों, ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। श्रोता साथियों, अध्ययन बताते हैं जिन लोगों के सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि गांव में आज भी कई लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए घरेलू और पारंपरिक उपायों को अपनाते हैं।
0: जी जी।
1: जैसे कि तुलसी, गिलोय, नीम, हल्दी, अदरक, आंवला, एलोवेरा। श्रोता साथियों, अन्य ये औषधियां हैं, इनका उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है।
0: जी हाँ।
1: हालांकि श्रोता साथियों, गंभीर बीमारी होने पर हमें डॉक्टर की सलाह लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोता साथियों, पारंपरिक ज्ञान स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
0: जी हाँ मनीषा, स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं बल्कि शरीर, मन और समाज तीनों का संतुलित और प्रसन्न होना है। गाँव की जीवन शैली हमें यही संतुलन सिखाती है। मिट्टी से जुड़ाव, सादा भोजन, नियमित श्रम, परिवार का साथ, प्रकृति का सानिध्य और सामुदायिक सहयोग, ये ऐसे अनमोल गुण हैं जिन्हें आधुनिक जीवन की भागदौड़ में भी अपनाया जा सकता है।
1: जी हाँ,
0: समय की मांग है कि हम अपनी परंपराओं को पिछड़ापन न समझें बल्कि उनमें छिपे वैज्ञानिक और स्वास्थ्यवर्धक पहलुओं को पहचाने। जब गांव का हर परिवार पौष्टिक भोजन, स्वच्छता, नियमित दिनचर्या, पर्यावरण संरक्षण और आपसी सहयोग को अपनी आदत बनाएगा, तब केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा गांव स्वस्थ, आत्मनिर्भर और खुशहाल बनेगा। इसलिए हम सबको मिलकर यह बात माननी होगी, आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ अपनी ग्रामीण संस्कृति की उन अमूल्य जीवन शैली को भी जीवित रखेंगे जो हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन और मजबूत समाज की दिशा में आगे बढ़ाती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही वो आप सभी को जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप अधिक जानकारी के लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं हमारी इस ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
0: नमस्कार।

भाई बोनो, घर की निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत करते हैं आपसे एक नए विषय को लेकर। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसा कि श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है और इस यात्रा में कभी हमें असफलता मिलती है तो कभी हमें सफलता मिलती है। कभी हमारे पास खुशियाँ होती है साथियों, तो कभी हम चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे समय में जो शक्ति हमें आगे बढ़ने का साहस देती है, यानी कि जो हमें गिरकर फिर से उठना सिखाती है और हमारे सपनों को पंख देती है, उसे ही हम प्रेरणा कहते हैं। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि प्रेरणा वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार करती है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है और प्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो बातें ढेर सारी होंगी दोस्तों, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ आप सभी को मनोरंजन करवाते हैं, तो आज भी श्रोता साथियों यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय जुड़ रहा है कि हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसे कि साथियों गीत से पहले मेरी आपसे कुछ बातें रही थी कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है, जहाँ हमें सफलता मिलती है तो वहाँ हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। कभी हमारे पास ढेर सारी खुशियाँ होती हैं तो कभी दुख होता है और कभी चुनौतियों का सामना हमारे जीवन में हमें करना पड़ता है। ऐसे में श्रोता साथियों प्रेरणा ही एक ऐसी चीज है जो हमें गिरकर उठना सिखाती है। और दोस्तों जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया भी था कि कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि क्या यह किसी पुस्तक में मिलती है या फिर किसी व्यक्ति से मिलती है या फिर ये हमारे भीतर ही छिपी हुई है जिसे हम जान नहीं पाते हैं। अगर बताऊं श्रोता साथियों तो वास्तव में प्रेरणा का कोई एक स्रोत नहीं होता। ये जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हमारे अपने विचारों से ही हमें प्राप्त हो सकती है। आवश्यकता दोस्तों केवल उसे पहचानने की होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का मतलब होता है किसी अच्छे कार्य के लिए मन में जागृत होने वाली सकारात्मक भावना। दोस्तों जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित होते हैं और जब हमारे भीतर कुछ नया करने की इच्छा पैदा होती है तो हम देखते हैं कि उससे हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम कठिनाइयों से हार नहीं मानते साथियों तब प्रेरणा हमारे साथ होती है। यानी कि प्रेरणा केवल बड़े कार्यों के लिए नहीं होती, जैसे कि एक छात्र को पढ़ाई के लिए, एक किसान को खेती के लिए, एक खिलाड़ी को अभ्यास के लिए साथियों, एक कलाकार को सृजन के लिए, वहीं एक सामान्य व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है हमारे अपने सपने। दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ सपने तो होते ही हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक या उद्यमी बनना चाहते हैं। दोस्तों यही सपने जो होते हैं वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब व्यक्ति अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखता है ना साथियों, तब हमारे भीतर उन्हें पूरा करने की लगन भी पैदा हो जाती है। सपने हमें ये याद दिलाते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों अगर बताया जाए तो सपनों के बिना जीवन दिशाहीन हो सकता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सपने केवल सोते समय नहीं बल्कि जागते हुए भी देखने चाहिए। वह सपने हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं जिन्हें हम जागते हुए देखते हैं। तो ये तो श्रोता साथियों हम जान पाए हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सपने होते हैं। तो और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही हमारी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि दोस्तों बात कर रहे हैं कि प्रेरणा आखिर हमें मिलती कहाँ से है, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि प्रेरणा प्राप्त करने का सबसे जरूरी माध्यम है सपने, और सपने वो होते हैं जो हम सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए देखते हैं, और उन्हीं सपनों को पूरा करने की लगन हमारे अंदर पैदा होती है। यही दोस्तों अगर बात करूं परिवार से मिलने वाली प्रेरणा की, तो हमारे जीवन की पहली प्रेरणा अक्सर हमारे परिवार से ही हमें मिलती है। माता पिता का संघर्ष, उनका परिश्रम और उनका त्याग हमें श्रोता साथियों बहुत कुछ सिखाता है। देखते हैं कि एक पिता जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वह अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। वहीं एक माँ जो हर परिस्थिति में परिवार को संभालती है, श्रोता साथियों वह धैर्य, प्रेम और समर्पण की मिसाल बन जाती है। वहीं दादा दादी और नाना नानी के अनुभव भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख देते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि उनकी कहानियाँ, उनके संघर्ष और उनके जीवन के अनुभव हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से श्रोता साथियों कहा जा सकता है कि हमारे जीवन में हमें पहली प्रेरणा हमारे परिवार से मिलती है। यही अगर महान व्यक्तियों के जीवन की प्रेरणा के बारे में जाने, तो इतिहास और वर्तमान समय में ऐसे कई महान व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिल सकती है। जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी श्रोता साथियों, तब हमें ये समझ आता है कि सफलता आसान नहीं होती, लेकिन असंभव भी नहीं होती। महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे वर्षों का परिश्रम होता है, अनुशासन होता है, धैर्य होता है और संघर्ष छिपा हुआ होता है। दोस्तों, उनके जीवन की कहानियां हमें ये सिखाती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है।

समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने लग जाता है। हम देखते हैं कि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेरणा केवल सफलता से ही मिलेगी, जबकि दोस्तों वास्तविकता ये है कि कई बार सबसे बड़ी प्रेरणा असफलताओं से ही मिलती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाता है लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता, तब वह पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरता है। साथियों, असफलता हमें हमारी कमियों को पहचानने का अवसर देती है, क्योंकि जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा साथियों, सफलता का आनंद भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेने की आवश्यकता है हमें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सपनों को पूरा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जैसा कि हमने जाना कि हमारे पास ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कोई किसान दिन भर मेहनत करके त्याग करके सफलता प्राप्त करता है, कोई छात्र कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करता है, वहीं कोई महिला आत्मनिर्भर बनकर समाज में नई पहचान बनाती है। दोस्तों, ऐसी ही वास्तविक कहानियां हमें ये विश्वास दिलाती है कि यदि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्रेरणा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें किसी एक स्थान पर मिल जाए। ये तो श्रोता साथियों हमारे सपनों में, हमारे परिवार में, प्रकृति में, महान व्यक्तियों के जीवन में और सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों से बढ़कर आगे बढ़ने में हमें मिलती है। आवश्यकता केवल अपनी आंखें, मन और विचार खुले रखने की है। दोस्तों, जब व्यक्ति प्रेरणा के इन स्रोतों को पहचान लेता है तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। प्रेरणा ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने का साहस देती है। साथियों, इसलिए आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों, अपने जीवन में प्रेरणा खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अपने सपनों को पहचानिए, अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने आसपास की सकारात्मक बातों से सीखिए साथियों, और निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प ले लीजिए। याद रखिए, उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से भरी जाती है। यदि आपके भीतर भी श्रोता साथियों विश्वास और प्रेरणा है तो आपके सपनों का आकाश असीमित होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं। तो विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक प्रेरणादायक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: मारु नाम गिल्ली है ने मू मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही हती, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है, तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इने पानी पीवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध ज पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने काहे भी खवड़ावंगा तो इन्हे दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानु दूधस पीवू है।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
0: सेहत नु राज हूँ है बोन,
3: असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
0: होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
3: होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
0: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ, हमारे घर में ऐसी कितनी ही चीजें होती हैं श्रोता साथियों जिन्हें हम पुरानी बेकार और कबाड़ समझ कर फेंक देते हैं। कोई पुराना कपड़ा, दादी की संदूकची, लकड़ी का छोटा डिब्बा, पुरानी चिट्ठी, स्कूल की कॉपी, मिट्टी का बर्तन, टूटा हुआ खिलौना, पुरानी घड़ी या फिर घर का कोई ऐसा सामान जिसे देखकर हमें लगता है कि अब इसका क्या काम। लेकिन मनीषा, आज जब भी हम किसी पुरानी चीज को फेंकने लगे हैं तो बस एक पल हमको रुककर खुद से पूछना है कि क्या यह चीज सच में बेकार है या अपने साथ हमारे जिंदगी की कोई एक कहानी समेटे हुए है।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि हर पुरानी चीज केवल वस्तु नहीं होती है दोस्तों, कई बार वह किसी व्यक्ति की याद, किसी रिश्ते का एहसास, किसी मेहनत की निशानी और हमारे परिवार के बीते समय की गवाही होती है। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि चीजों को फेंकने से पहले खुद से पूछें कि वह अपने साथ कौन सी कहानी समेटे हुए है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं चीजों को फेंकने से पहले खुद से पूछे कि वे अपने साथ कौन सी कहानी समेटे हुए हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर एक दिन पुरानी समझकर फेंक देते हैं। कोई किताब, दादी की दी हुई साड़ी, पिता की पुरानी घड़ी, बचपन का खिलौना, स्कूल की कॉपी या किसी यात्रा से लाई गई छोटी सी वस्तु, या हम देखते हैं कि कोई घर के पुराना सामान हो। श्रोता साथियों, समय के साथ हमें लगता है कि इन चीजों की जरूरत अब नहीं है, अब उन्हें कबाड़ समझकर हम बाहर कर देते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, क्या हर पुरानी चीज एक वस्तु होती है? कभी कभी कोई छोटी सी चीज अपने अंदर हमारे लिए और हमारे जीवन का एक हिस्सा छुपाई होती है।
1: बिल्कुल।
0: किसी पुराने खिलौनों को देखकर बचपन की याद आ सकती है, किसी पुराने किताब में किसी प्रिय की लिखी हुई लिखावट मिल सकती है, किसी पुराने कपड़े से किसी खास अवसर से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है, किसी पुराने बर्तन से दादी माँ के हाथों की खुशबू होती और परिवार खुशबू हो सकती है और परिवार के बिताए हुए समय को हम याद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, चीजें केवल चीजें नहीं होती है। हम अक्सर किसी वस्तु की कीमत उसके बाजार भाव से तय करते हैं। अगर कोई चीज पुरानी हो गई, उसकी चमक चली गई या उसका इस्तेमाल कम हो गया तो हम उसे बेकार मान लेते हैं। लेकिन क्या श्रोता साथियों, किसी चीज की कीमत केवल पैसे से तय होती है? जरा सोचिएगा कि एक पुरानी चारपाई बाजार में शायद बहुत कम कीमत पर मिलती हो, लेकिन उसी चारपाई पर बैठकर दादा दादी ने परिवार के साथ कितनी शामें बिताई होंगी, उसी पर बैठकर बच्चों ने कहानियां सुनी होंगी, गर्मियों की रातों में पूरा परिवार उसी के आसपास बैठा होगा। वह चारपाई केवल लकड़ी का सामान नहीं रह जाती, वह परिवार की यादों का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह घर में रखी हुई पुरानी सिलाई मशीन को देखिए, आज शायद उसके स्थान पर आधुनिक मशीन आ गई हो, लेकिन हो सकता है कि उसी मशीन ने माँ ने बच्चों के कपड़े सिले हों, किसी बेटी की शादी के कपड़े तैयार किए हों, या परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए घर बैठे मेहमान की हो, मेहनत की हो। यानी

0: की मशीन पुरानी हो गई, लेकिन उसकी कहानी पुरानी नहीं हुई है।
1: जी बिल्कुल।
0: आज हम देखते हैं कि हमारे गांव में ऐसी चीजों की कोई कमी नहीं होती है। पुरानी मिट्टी की हांडी, पीतल का लोटा, लकड़ी की पेटी, हाथ से बनाई कटोरी, पुरानी ओढ़नी, चांदी के पुराने गहनों का डिब्बा, खेती के पुराने औजार, बैलगाड़ी का कोई हिस्सा, हाथ से बनी रस्सी, पुरानी चक्की, अनाज रखने की कोठी, इनमें से बहुत सी चीजें आज हमारे लिए सामान्य हमें लग सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर श्रोता साथियों इनके पीछे की कहानी पूछें तो पता चलेगा कि इनके साथ पूरा एक दौर जुड़ा हुआ है। किसी बुजुर्ग से पूछिए कि यह पुराना बर्तन कब से घर में है, शायद वे कहेंगे कि यह तो मेरी माँ के समय का है।
1: जी हाँ।
0: फिर पूछिए और यह संदूक, तो वह बताएंगे कि इसमें तुम्हारी दादी की शादी के कपड़े रखे जाते थे। फिर पूछिए कि यह पुराना औजार किसका था, जवाब मिलेगा तुम्हारे दादा इसी से खेत में काम करते थे। यानी कि जिस वस्तु को हम आज कबाड़ समझ रहे हैं वह हमारे परिवार के इतिहास की एक छोटी सी किताब निकल सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसीलिए हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि चीजों को फेंकने से पहले एक बार रुककर खुद से जरूर पूछना, यह चीज मेरे लिए क्या मायने रखती है, इसके साथ मेरी कौन सी कहानी जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, यह सवाल हमें सिर्फ चीजों को बचाना नहीं सिखाता, बल्कि हमें अपने यादों, रिश्तों और पर्यावरण को संवेदनशील बनाना सिखाता है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हम अक्सर किसी वस्तु का मूल्य उसके उपयोग से तय करते हैं। अगर कोई वस्तु हमारे काम की नहीं रही तो हम उसे बेकार समझकर बेच देते हैं या किसी को दे देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, किसी चीज का मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि वह आज हमारे कितने काम आ रही है। एक पुरानी घड़ी शायद आज सही समय न बताए, लेकिन श्रोता साथियों हो सकता है कि वह किसी व्यक्ति को उसके दादा की याद दिला दे। पुरानी तस्वीरें हैं वो बाजार में, उनका मूल्य कम हो सकता है श्रोता साथियों, लेकिन परिवार के लिए यह बहुत कीमती हो सकती है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आज हमारी जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है। नई चीज आती है तो पुरानी चीज तुरंत बाहर हो जाती है। नया मोबाइल आया तो पुराना रख दिया जाता है, नया कपड़ा आया तो पुराना अलग कर दिया जाता है, नया फर्नीचर आया तो पुराना हटा दिया जाता है, नया बर्तन आया तो पुराना कबाड़ में चला गया। नई चीजें खरीदना गलत नहीं है श्रोता साथियों, जरूरत के अनुसार बदलाव भी जरूरी है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम बिना सोचे समझे हर चीज को बेकार समझने लगते हैं। कभी कभी हमें खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला यह कि क्या यह चीज अभी भी किसी काम आ सकती है। फिर दूसरा यह कि क्या इसे ठीक करके दोबारा इस्तेमाल में किया जा सकता है। तीसरा यह कि क्या इससे हमारे परिवार या समाज की कोई याद, परंपरा या कहानी जुड़ी हुई है। अगर जवाब हाँ है तो उसे तुरंत फेंकने के बजाय संभालना चाहिए। हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते हैं मनीषा, वे हमारे घर की चलती फिरती इतिहास की किताब होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उनके पास उन दिनों की कहानियां होती हैं जिन्हें हमने देखा ही नहीं। जब बिजली हर घर में नहीं थी तब जीवन कैसा था, जब बाजार से हर चीज खरीदना संभव नहीं था तब लोग जरूरतें कैसे पूरी थे, कपड़े कैसे बनाए जाते थे, अनाज कैसे सुरक्षित रखा जाता था, त्योहार कैसे मनाए जाते थे, खेती में कौन से पारंपरिक औजार इस्तेमाल होते थे, शादी ब्याह की रस्में कैसी होती थी। इन सवालों के जवाब कई बार हमें किताबों से नहीं बल्कि अपने घर की पुरानी वस्तुओं से मिल सकते हैं। इसलिए किसी पुराने सामान को फेंकने से पहले घर के बुजुर्ग से पूछिए कि इस चीज की कहानी क्या है। शायद उस एक सवाल से आपको ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारे श्रोता साथियों से आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ, आइए दोस्तों सुनते हैं इसकी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनमें बुज़ुर्गों की यादें होती हैं और किस तरीके से वो हमें एक कहानी लिख कर देती हैं, वहीं अब बात आती है पुरानी चीज़ों को नया जीवन दे। जी हाँ श्रोता साथियों, पुरानी चीज़ को बचाने का मतलब यह नहीं है कि घर में हर सामान जमा करते रहें, ज़रूरत यह है कि हम सोच समझ कर उपयोग करें। पुराने कपड़ों को साफ करके ज़रूरतमंद को दिया जा सकता है, पुरानी बोतलों का उपयोग पौधे लगाने में किया जा सकता है, लकड़ी के पुराने सामान को ठीक करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, पुरानी कॉपियों की खाली पन्नों से अभ्यास की कॉपी बनाई जा सकती है, पुरानी साड़ियों से थैले बनाए जा सकते हैं, टूटे हुए फर्नीचर की लकड़ी से छोटी उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती है। यानी कि हर चीज का अंत कूड़ेदान में होना जरूरी नहीं है। कई चीजों को हम पुनः उपयोग, मरम्मत, दान या रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा पैसा भी बचता है और कचरा भी कम होता है। श्रोता साथियों, वस्तुओं को बचाना पर्यावरण को बचाना भी है। जब मनीषा हम जरूरत से ज्यादा सामान खरीदते हैं और पुरानी चीजों को जल्दी फेंकते हैं तो कचरा बढ़ता है। कचरा बढ़ना केवल हमारे घर की समस्या नहीं है, इसका असर हमारे गाँव, खेत, जमीन, पुरानी पानी, वातावरण सभी पर पड़ता है। इसलिए किसी चीज को फेंकने से पहले सोचना कि एक छोटी आदत जरूरी है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अगर एक परिवार महीने में केवल कुछ चीजों को भी फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल कर ले तो साल भर में काफी कचरा कम किया जा सकता है। और जब यदि यही आदत पूरे गांव, परिवार और समाज के सभी लोग अपना लें तो बदलाव और बड़ा हो सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि वस्तु का एक आर्थिक मूल्य होता है और दूसरा भावनात्मक मूल्य। श्रोता साथियों, आर्थिक मूल्य समय के साथ कम हो सकता है लेकिन अंजलि जी हम देखते हैं कि भावनात्मक मूल्य है वो कई बार समय के साथ बढ़ जाता है।
0: जी,
1: किसी पुरानी वस्तु को देखकर जब हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है श्रोता साथियों, आंखों के सामने उसकी याद आ जाती है और वही वस्तु हमारे लिए केवल वस्तु नहीं रह जाती बल्कि हमारे जीवन की एक कहानी, एक हिस्सा बन जाती है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हर पुरानी चीज के पीछे एक कहानी होती है। हमारे घर में रखी हर पुरानी चीज है वो अपने साथ एक कहानी लेकर चलती है। मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी घर में एक पुराना संदूक रखा है, दिखने में वह सामान्य और पुराना लग सकता है लेकिन अंजलि जी उस संदूक में किसी परिवार की कई पीढ़ियों की यादें रखी हो सकती है। उसमें पत्र, तस्वीरें, कपड़े या दरवाजे हो सकते हैं। श्रोता साथियों, इसी तस्वीर कि एक पुरानी किताब, कागज या पन्ने का संग्रहण हो सकता है। श्रोता साथियों, हो सकता है कि उसमें पढ़ते समय किसी ने अपनी महत्वपूर्ण बातें लिखी हो, किसी पन्ने पर कोई तारीख लिखी हो जो कि किसी विशेष के लिए महत्वपूर्ण हो, किसी कोने में किसी प्रिय का नाम लिखा हो या शायद किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति के जीवन की छोटी सी कहानी हो सकती है। साथियों, कहना चाहेंगे कि बचपन में खिलौना भी ऐसा हो सकता है श्रोता साथियों जो हमें अपने बचपन की याद दिला दे और हमारे जीवन को फिर से खुशहाल बना दे और हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दे।
0: बिल्कुल मनीषा, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि कुछ चीजें पैसे से नहीं, भावनाओं से जुड़ी होती है। मान लीजिए कि किसी बच्चे के पास बचपन का एक छोटा खिलौना हो, खिलौना पुराना हो गया, उसका रंग उतर गया, शायद उसका एक हिस्सा भी टूट गया। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वह सिर्फ एक पुराना खिलौना है लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह उसके बचपन की पहली मुस्कान हो सकता है, उसके माता पिता का पहला उपहार हो सकता है, किसी खास व्यक्ति की याद हो सकता है। इसी तरह किसी के पास माँ की पुरानी साड़ी हो सकती है, किसी के पास पिता की घड़ी, किसी के पास दादा की टोपी, किसी के पास स्कूल की पहली किताब। इन चीजों की बाजार में कीमत शायद बहुत कम हो लेकिन भावनात्मक कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए हर चीज को केवल पुरानी कहकर खारिज नहीं करना चाहिए। मनीषा, आज के बच्चों को नई चीजें जल्दी पसंद आती है, यह स्वाभाविक है लेकिन उन्हें यह भी सिखाना जरूरी है कि वस्तुओं का सम्मान कैसे किया जाता है। घर में कोई पुरानी चीज हो तो बच्चों को उसके बारे में बताएं, कहें कि ये तुम्हारे दादा के समय की चीज है, ये तुम्हारी दादी के घर से आई थी, इस बर्तन में पहले त्योहारों पर खाना बनाया जाता था, इस पुराने औजार में खेत में काम किया जाता था। ऐसी बातें बच्चों को परिवार की जड़ों से जोड़ती है, उन्हें यह समझ आता है कि परिवार केवल आज से नहीं बना है बल्कि पिछले कई पीढ़ियों साथियों की मेहनत, संघर्ष, संस्कार और अनुभव से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि मनुष्य का जीवन केवल आज और कल से नहीं बना हुआ है, हमारे जीवन में बीता हुआ समय भी श्रोता साथियों उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि बचपन, स्कूल, परिवार, दोस्त, त्योहार, यात्राएं, सफलताएं, संघर्ष, ये सारे जीवन के छोटे छोटे अनुभव है जो हमें एक नई पहचान देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इन्हीं यादों को जीवित रखने के लिए श्रोता साथियों वस्तु की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। कई बार अंजलि जी कोई पुरानी चीज हमें उस समय में वापस ले जाती है जब हमारे जीवन में कुछ खास हुआ हो या किसी चीज को देखकर हमारी यादें ताजा हो जाती हैं। श्रोता साथियों, इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर पुरानी वस्तु को संभाल कर रखें, इसका अर्थ यह है कि केवल इतना जरूर करें कि हमारी यादें जुड़ी हुई हैं जो हमारे लिए उपयोगी है और जिसे हम फिर से उपयोग में ले सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम संभाल कर रखें।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, यही बात आती है कि हमें एक छोटी सी पारिवारिक पहल करनी है, यानी कि हर परिवार महीने में एक दिन ऐसा कर सकता है जिसे हम कहें यादों की चीजों का दिन। उस दिन घर में रखी किसी पुरानी वस्तु को निकाला जाए, उस वस्तु के बारे में परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा जाए या किसकी थी, कब खरीदी गई थी, इसका उपयोग किस तरह होता था, इससे जुड़ी कोई याद है, इसे किसने संभाल कर रखा, क्या इसे आगे भी सुरक्षित रखा जा सकता है। बच्चे इन कहानियों को कॉपी में लिख सकते हैं, चाहे तो परिवार उस वस्तु की फोटो लेकर उसके साथ उसकी कहानी भी लिख सकता है। इस तरह घर का सामान केवल सामान नहीं रहेगा बल्कि परिवार का अपना छोटा इतिहास बन जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: हमारी लोक संस्कृति केवल गीतों, नृत्यों और त्योहारों में नहीं रहती, हमारी संस्कृति हमारे रोजमर्रा के सामान में छिपी होती है।
1: जी हाँ।
0: मिट्टी के बर्तन बताते हैं कि हमारे पूर्वज प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करते थे। हाथ से बुनी टोकरी हमारे पारंपरिक हुनर की कहानी कहती है, पुराने कृषि उपकरण हमारी खेती की यात्रा बताते हैं, पारंपरिक कपड़े हमारे क्षेत्र की पहचान बताते हैं, पुराने आभूषण हमारी कला और कारीगरी का परिचय देते हैं। इसलिए पुरानी चीजों को बचाकर केवल यादों को बचाना नहीं बल्कि कई बार अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाना भी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से चीजों को फेंकने से पहले खुद से पूछे कि वे अपने साथ कौन सी कहानी समेटे हुए है। इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही और आगे भी हमारी बातें हमारे श्रोता साथियों से ऐसे ही जारी रहेंगी।
0: जी जी।
1: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे, चीजों को फेंकने से पहले खुद से पूछे कि वे अपने साथ कौन सी कहानी समेटे हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: यही अगर अंजलि जी बात करें कि पर्यावरण की दृष्टि से यह हमारे लिए सोचना क्यों जरूरी है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि चीजों को कई बार बार बार खरीदना या फेंकना भावनात्मक नुकसान नहीं करता है, बल्कि पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। श्रोता साथियों, जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं या उसका कचरा बनता है, तो कई बार हम अंजलि जी हम देखते हैं कि वस्तु पानी या ऊर्जा या अन्य संसाधनों के लिए उपयोगी नहीं होती है। यदि हम वस्तुओं का लंबे समय तक उपयोग करते हैं श्रोता साथियों, उनकी मरम्मत करवाएं, जरूरतमंदों को दे दें, तो उनका पूर्ण हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम फेंक देते हैं तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए श्रोता साथियों, फेंकने से पहले सोचे का विचार हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी उपयोगी है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हर पुरानी वस्तु को फेंकना जरूरी नहीं है। कई चीजों को थोड़े बदलाव के साथ दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि पुराने कपड़े उपयोगी सामान बनाया जा सकता है, पुरानी बोतलों से अन्य उपयोगी सामान बनाए जा सकते हैं, पुरानी किताबें हम जरूरतमंद बच्चों को दे सकते हैं, उपयोगी फर्नीचर की मरम्मत हम करवा सकते हैं। श्रोता साथियों, किसी भी वस्तु का उपयोग हमारे लिए समाप्त नहीं होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उस सामान को बेकार समझ के फेंक दें, बल्कि इसका अर्थ श्रोता साथियों यह है कि हम उस सामान को अच्छी तरह से ठीक करके उसका पुनः हम उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि हमें अपने घर की पुरानी चीजें कौन सी है उनको देखना है, फिर वह कब से है, किससे जुड़ी हुई है, उसका पारिवारिक कोई खास यादें उससे तो कुछ जुड़ी नहीं हुई, ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है। साथियों, जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं और बहुत सारी चीजें छोड़ जाते हैं। समय बदलता है, जरूरतें बदलती हैं और वस्तुएं भी बदलती हैं। नई चीजों का आना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन बदलाव की इस दौड़ में हमें अपनी पुरानी चीजों से जुड़ी भावनाओं, यादों और कहानियों को खोना नहीं चाहिए। किसी वस्तु का पुराना होना यह साबित नहीं करता कि वह बेकार हो गई है। कभी कभी उसका सबसे बड़ा मूल्य उसके इस्तेमाल में नहीं, बल्कि उस कहानी में होता है जो वह अपने भीतर समेटे रहती है। एक पुरानी चिट्ठी हमें किसी रिश्ते की याद दिला सकती है, एक पुराना कपड़ा किसी अपने का एहसास दे सकता है, एक पुराना औजार किसी मेहनतकश हाथ की कहानी बता सकता है, एक पुराना बर्तन किसी त्योहार की खुशबू याद दिला सकता है, खिलौना किसी बच्चे का पूरा बचपन अपने भीतर संभाल सकता है। इसलिए अगली बार जब भी साफ करते हुए कोई पुरानी चीजें हाथ में आए और मन कहे इसे फेंक दो, तो तुरंत फैसला मत कीजिए। बस एक पल रुकिए और पूछिए कि क्या सच में बेकार है, क्या इसे किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और सबसे जरूरी यह कि अपने साथ कौन सी पुरानी कहानी समेटे हुए है। क्योंकि वस्तुएं पुरानी हो सकती है, लेकिन उनसे जुड़ी यादें अक्सर कभी पुरानी नहीं होती। नई चीजों को अपनाएं, लेकिन पुरानी यादों को संभाल कर रखिए। जरूरत से ज्यादा जमा मत कीजिए, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी चीजों को यूं ही मत मिटाइए। मरम्मत कीजिए, पुनः उपयोग कीजिए, जरूरतमंद को दीजिए, और जो चीजें परिवार की कहानी कहती है उसे सम्मान से संभालिए। और शायद यही छोटी सी आदत हमें यह सिखा सकती है कि सादगी केवल कम सामान रखने का नाम नहीं है, बल्कि हर चीज की उपयोगिता, मेहनत और भावनात्मक मूल्यों को समझने का भी नाम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज कूड़ेदान में डालने से पहले कहानी जरूर जाननी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हमें अपनी वस्तुओं की कहानियां लिखनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है श्रोता साथियों, तो उसकी कहानी लिखना एक अच्छा तरीका हमारे लिए हो सकती है। हम लिख सकते हैं कि यह वस्तु हमें कब मिली, किसने दी, उस समय हमारी जिंदगी कैसी थी और कौन सी याद इससे हमसे जुड़ी हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ साल बाद श्रोता साथियों वही कहानी हमें पढ़नी है और वो वस्तुएं हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि चीजों को फेंकना जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। समय के साथ कई पुरानी वस्तुएं पुरानी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं या हमारे लिए उपयोगी नहीं रहती। लेकिन श्रोता साथियों, किसी चीज को फेंकने से पहले कुछ पल रुकना, उसके पीछे की कहानी को याद करना हमारे जीवन में हमारे रिश्तों को हमारे करीब लाता है। एक पुरानी वस्तु शायद श्रोता साथियों बाजार बाजार में बेकार हो चुकी होती है, लेकिन वह हमारे लिए किसी खास व्यक्ति की याद हो सकती है।
1: हाँ।
0: कोई पुराना कपड़ा शायद पहनने लायक न हो श्रोता साथियों, लेकिन उससे किसी त्योहार की यादें छिपी होती हैं। कोई पुरानी किताब शायद अब हमारे लिए उपयोगी नहीं हो, लेकिन उसे हम किसी जरूरतमंद बच्चे को देकर उसकी यादें हैं वो हम ताजा कर सकते हैं। कोई पुरानी तस्वीर शायद श्रोता साथियों हमारे लिए कागज का टुकड़ा बन गई हो, लेकिन उसमें हमारा परिवार मुस्कुराता दिखाई हमें दे सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ पुरानी है उससे फेंकने से पहले हमें कई सारी चीज़ों की ओर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि किसी वस्तु को बचाने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने घर को अनावश्यक सामान से भरते जाएं। असली समझदारी तो यह पहचानने में है कि क्या रखना ज़रूरी है, क्या दोबारा उपयोग किया जा सकता है, क्या किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकता है और क्या वास्तव में त्यागने योग्य है। जब यह अंतर समझ में आने लगे तब हमारे भीतर उपभोग के प्रति भी एक जिम्मेदारी दृष्टिकोण होती है। आज के समय में हर चीज जल्दी बदल रही है। विज्ञापन हमें बार बार नई चीजें खरीदने के लिए आकर्षित करते हैं और पुरानी वस्तु को कम महत्वपूर्ण महसूस करवाते हैं। लेकिन जीवन की सुंदरता केवल नई चीजें हासिल करने में नहीं, कभी कभी किसी पुरानी वस्तु को संभाल कर रखना हमें धैर्य, कृतज्ञता और अपनी पिछली पीढ़ियों के प्रति सम्मान सिखाता है। हमारे घर की छोटी वस्तुएं हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में जो सुविधाएं आज आसानी से उपलब्ध हैं, उनके पीछे पिछली पीढ़ियों की मेहनत और संघर्ष छिपा हुआ है। जिस चीज को आज हम सामान्य समझते हैं, हो सकता है कभी वह परिवार के लिए बहुत मूल्यवान रही हो। इसलिए वस्तुओं को देख कर केवल उनका वर्तमान रूप नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे समय को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसीलिए हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे, जब अगली बार श्रोता साथियों आपके घर की सफाई करें तो कोई पुरानी चीज फेंकने के लिए हाथ बढ़ाएं, तो एक बार रुक कर जरूर पूछें खुद से कि क्या यह सच में सिर्फ एक पुरानी चीज है या हमारे जीवन की कोई कहानी समेटे हुए है।
1: बिल्कुल।
0: अगर उससे कोई याद जुड़ी है श्रोता साथियों, तो उसे सुरक्षित रखने का तरीका खोजें। अगर वह उपयोगी है तो उसका दोबारा इस्तेमाल आप करें। अगर हमारे लिए वह काम की नहीं है लेकिन किसी और के काम आ सकती है, तो जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आखिर में उसे छोड़ना ही पड़े श्रोता साथियों, तो उसकी कहानी अपने मन में जरूर रखें, क्योंकि श्रोता साथियों जिंदगी में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी कहानियों के साथ हमारे जीवन को खुशहाल बना देती है।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे साथियों कि वास्तव में हमारी जिंदगी केवल उन चीजों से नहीं बनती जो हमारे पास है, बल्कि उन यादों से बनती है जो हमें उनकी यादों के माध्यम से हमारे दिल में खुशी आ जाती है, हमारे परिवार में मुस्कुराहट आ जाती है। इसलिए श्रोता साथियों, अगली बार किसी पुरानी वस्तु को फेंकने से पहले एक बार ठहर कर उसे ध्यान से देखिए और खुद से पूछिए, तुम मेरे जीवन में कब आई थी, हमारी कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं और हम तुम्हें सच में फेंकना चाहते हैं या नहीं। शायद श्रोता साथियों उस पल आपको एहसास हो कि यह कबाड़ के लायक नहीं है बल्कि हमारे जीवन की एक कहानी है और इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो अवश्य कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में है।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम की ओर। जैसा कि ढेर सारी बातों को जान ही चुके थे, अब अंत में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि यह सोच हमारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे बचपन से ही वस्तुओं का सम्मान करना, उन्हें संभाल कर रखना, टूटने पर सुधारना और जरूरत पूरी होने के बाद किसी दूसरे के काम आने देना सीखेंगे तो उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। वे हर चीज को तुरंत बदलने के बजाय उनके सही उपयोग के बारे में सोचेंगे और यही छोटी सी आदत आगे चलकर जिम्मेदार नागरिक और संवेदनशील समाज बनाने में योगदान दे सकती है। हमारे घरों में रखी पुरानी वस्तुएं केवल बीते समय की निशानी नहीं होती है मनीषा, वे हमें यह अवसर देती हैं कि हम अपने परिवार के लोगों से बातचीत करें, उनके अनुभव सुने और उन बातों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं जो किसी किताब में शायद कभी दर्ज नहीं हुई। इस वस्तु के बहाने शुरू हुई बातचीत कई बार परिवार के इतिहास

0: संघर्ष रिश्तों उपलब्धियों तक पहुंच जाती है। इसलिए आज से अपने घर में एक नई आदत शुरू कीजिए। कोई भी चीज फेंकने से पहले कुछ क्षण रुकिए, उसके उपयोग के बारे में सोचिए, उसके पीछे की मेहनत को याद कीजिए और यदि उससे कोई भावनात्मक या पारिवारिक जुड़ाव है तो उसे समझिए। जो चीज आपके लिए उपयोगी नहीं है उसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए जिसके लिए वह उपयोगी हो सकती है। और अगर कोई वस्तु वास्तव में अनुपयोगी है तो उसे भी जिम्मेदारी से निपटाइए ताकि वह हमारे आसपास के वातावरण के लिए समस्या न बने। क्योंकि सामाजिक समझदारी केवल यह जानना नहीं है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, बल्कि यह समझना भी है कि हमारे पास मौजूद चीजों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम अपने घर और जीवन में एक ऐसा छोटा सा बदलाव लाएं, बिना सोचे फेंकने की आदत छोड़ें, जरूरत को पहचानने, उपयोग के महत्व को समझे और साथ ही अपनी विरासत को समझे। शायद किसी पुराने सामान को बचाते हुए हम केवल एक वस्तु नहीं बचा रहे होंगे, बल्कि किसी रिश्ते की गर्माहट, किसी बुजुर्गों की मेहनत, किसी परंपरा की पहचान और अपने परिवार की एक अनकही कहानी को आगे बढ़ा रहे होंगे। इसलिए हर चीज को संभाल कर रखना जरूरी नहीं, लेकिन हर चीज को फेंक देना भी समझदारी नहीं है। फैसला करने से पहले उसकी उपयोगिता समझिए और उसके पीछे छिपी कहानी की मेहनत की कदर कीजिए। इसी संदेश के साथ अब कार्यक्रम से विदा लेते हैं। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, उसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को
1: नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

0: बोलो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9414082643। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिएगा, हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागपत यूपी से। फिल्म का नाम है गदर, गीत के बोल हैं उड़ जा काले कावा। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने और उदित नारायण जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से, जोन डिकिस्ट्रो, रोजी डिकिस्ट्रो, पल डिकिस्ट्रो, विलिस डी डिकिस्ट्रो। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजरात अबू समझी। बनारस से जुड़ रहे मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही उड़ जा काले कावा। फिल्म का नाम है गदर, गीत इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने और उदित नारायण जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस प्यारे से गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में जैसा कि श्रोता साथियों फरमाइश का पहला गीत तो हमने सुनी लिया है, अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडवारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है वंश। गीत के बोल हैं, आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मास्टर खिल्लू परवेश, बेगम इमरान नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ जिला कोरबासी लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। इस गीत के अनुरोध करता है कोहका बलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमेकला जी खटक। चंद्रनगर से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश डोमिन और शालिनी जी डोमिन। लाहौरा से जुड़ रहे हैं डोली प्रभा और प्रभा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है वंश। गीत के बोल हैं, आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है रायगढ़ बिहार से। फिल्म का नाम है कसूर। गीत के बोल है, जिंदगी बन गई हो तुम। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है उमाराज, दीपक उमा, रमेश उमा, अरविंद उमा, कमल जी उमा खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं। दुर्गा कुमारी, राकेश ताई, सपना डुमरा से जुड़ना चाह रहे हैं। लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी चंद्रनगर से जुड़ रहे हैं। महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव और नरेंद्र जी यादव इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतिजी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है बक्सर शहर से फातिमा नाज, बीबी अंसारी, डब्ल्यू जी अंसारी। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते ही फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही जिंदगी बन गई हो तुम। फिल्म का नाम है कसूर और गीत के बोल ही जिंदगी बन गई हो तुम। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और अलका जी ने। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं साथियों के फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जलालाबाद वेस्ट से। फिल्म का नाम है मुकंदर का सिकंदर, गीत के बोल ही सलामे इश्क। इस गीत को आवाज दी लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी निमित और आहूजा जी। धनुरे तेलीवाला से जुड़ना चाह रहे निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। वासिम महाराष्ट्र से जुड़ रहे मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। रघुवीर नगर दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानू, एलिजा नायाब जी। दिल्ली से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जफर मोहम्मद अली जी, फलक नाज, बेबी अलीबा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, सनीता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाह, हेमन नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सलामे इश्क। फिल्म का नाम है मुकंदर का सिकंदर। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अंबाला हरियाणा से। फिल्म का नाम है विरासत, गीत के बोल हैं तारे ही बाराती। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और जसपिंदर सिंह ने। इस गीत के अनुरोध करता है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश रावल, प्रियंका नमद, गुरशब्द, गुरकीरत सिंह राहुल और मन्नत जी। इसी बीच जुन्नाचार्य दिल्ली से राज खोरवाल, रानी खोरवाल, प्रकाशी खोरवाल। इस गीत के अनुरोध करता है पुराना तालाब डुमराव से वल्ली उल्ला अंसारी, उस्मानाज अंसारी, शबनम बानो। बक्सर से जुट रहे हैं राज एडी अंसारी, फातमा नाज जी। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सतीश अनिजा और बिबला जी अनिजा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपनव जी नामदेव। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तारे हैं बाराती। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है घायल, गीत के बोल हैं दिल साथ नहीं जब से पागल ये जवानी है। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बी आर कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। ऐसे भी जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडी, प्रतिभाजी गुड़ानी, महेश राम टिके जी। इस गीत की अनुरोध करता है भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही दिल साथ नहीं जब से पागल ये जवानी है। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भद्रावती से। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी। गीत के बोल हैं, हो गया है तुमको प्यार सजना। इस गीत की फरमाइश करते हैं अब्दुल्लोहीवाला शाहिद शेख, शाहिल शेख, अब्दुलराजी शेख। संग मुंगी से जुड़ना चाह रहे हैं बाबा साहेब कणकर, साखरबाई कणकर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणेश्वरी कणकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। सरार पेरगाम कश्मीर से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से समित मशरूम, साइना हसन, अक्सनाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम जी और राम भाव तनवी जी। जौनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेजी इशराद, हजरत अबूसम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, हो गया है तुमको तो प्यार सजना। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

अरिश्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करते हैं सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, आनंद राठौड़, श्रीमती गिरिजा जी राठौड़, लोकी जोशी, श्रीमती पायल जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, बीबी वेदई जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं श्रीमती जयवंती केवट। बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं पूनम नायडू जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको फरमाइशों के गीत संगीत के साथ ढेर सारा मनोरंजन करवाते हैं। तो साथियों, आप आपकी फरमाइशों के गीतों को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414 08 2643 पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, इसी बीच अगली फरमाइश आई है सनावत से है मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हशमी, मोहम्मद इशहाक, बब्बू डब्बू और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। नाम बता दें आप सभी को। बीट शहर महाराष्ट्र से है ननकिशोर घट्टे, संगीता घट्टी, साक्षी, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय, पीपी खुलते, बिरजू परदेसी, सखी सहेली ग्रुप बीट शहर से है जयश्री महतरे, कविता, पुष्पा अग्रवाल, कमल कुलथे, मंजुशी परदेसी, मीरा भीसे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल तो पागल है।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, ऐसे भी चकली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है हिना, गीत के बोल हैं देर ना हो जाए। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, फरमाइश करता है इस गीत की। बोरावड़ से है सुनीता, कमलेश, राकेश, पूजा। फालोदी से हैं गोविंद, ममता, नरेश, प्रियंका, मनीष, संतोष, कविता, महेंद्र। ओसिया से हैं हेमंत, रेखा, दिनेश, सरोज। बालेश्वर से हैं अशोक, निर्मला, सुरेंद्र, किरण, राजू, सीमा, मुकेश और अंजू। बिलाड़ा से हैं प्रकाश, भावना, कैलाश और मीना, अर्जुन, संतोषी, रवि और ज्योति। सुमेरपुर से हैं दिनेश, गायत्री, सुरेश, रानी, चेतन, लक्ष्मी, विनोद और मनीषा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को, गीत के बोल हैं देर ना हो जाए कहीं।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत के बोल है चुरा के दिल मेरा। फरमाइश करता है इस गीत की। बड़नगर से है राहुल, शीतल, आकाश और नेहा। महितपुर से है लोकेश, अर्चना, नितिन और मीनाक्षी। तराना से है दीपक, रश्मि, विकास और सरिता। मनोज, पायल, सचिन, वंदना इसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। नागदा से है जितेंद्र, मधु, रविंद्र और संगीता, कमल, राधा, योगेश और माया। मनावर से है मोहन, रंजना, श्याम, कुसुम, हरीश, सीमा, राजेश और सुनीता। धर्मपुरी से है भरत, सरोज, नरेश और मनीषा। देवेंद्र, अनीता, राजकुमार और आशा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ में, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। इसे भी अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है विजयपथ। गीत के बोल हैं, राहों में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत को भी आवाज़ दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। फरमाइश करता है इस गीत की, बरौली से है राजीव, कंचन, पंकज और मोनिका, अजय, सीमा, सुनील, रितु, संदीप, पूजा, विवेक, शालिनी। फतेहपुर से हैं अनिल, रेखा, अमित और मधु, दीपक, आरती, रोहित और विनीता। चंदौली से हैं देवेश, प्रीति, आशीष खुराना और सरिता। रामपुर से हैं नीरज, शुक्ला, कविता, सौरभ और शिखा राजीव। महोबा से हैं विवेक, रानू, धर्मेंद्र, अंजलि, संजय, पूनम, कलम और निशा। जालौन से हैं अतुल, ज्योति, मनोज, रचना, सरिता और पूजा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल हैं, राहों में उनसे मुलाकात हो गई।

साथियों, अगली फरमाइश आई है। गीत की बोल है, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। फरमाइश करता है इस गीत की, मंडोर से है हुकुम सिंह चांदनी राजेश्वरी भावर लाल, गणेश राम कमल किशोर और मधुबाला। इसी के साथ शेरगढ़ से है नारायण विमला देवीलाल सुशीला मदन लाल जमुना पवन और इंदिरा। आहोर से है गोवर्धन चंद्रकला राजू मंगला ओम प्रकाश सरस्वती विक्रम आदित्य और प्रेमलता। बाली से हैं भूपेंद्र लक्ष्मण कमलेश्वरी और रतनलाल। जेतारड़ से है शंकरलाल फूल शंकर देवेंद्र सरिता रुक्मणी दिनकर मधु जगदीश सुशीला अश्विनी और शारदा। तो आइए साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल हैं, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है।

साथियों, अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं चलते चलते। फरमाइश करता है इस गीत के मंसूर से हैं हरिओम, गायत्री, नरेश, चंचल, कैलाश, ललिता, सुरेश और वसुधरा। जावरा से हैं रामनिवास, तुलसी, मोहनलाल, नीलम, शंकर, उर्मिला, धनश्याम और सुजाता। इसी के साथ धार से हैं गोविंद राम, पुष्पा, राजेंद्र, शांति, शंकर, महेश, देवकी, चंद्रशेखर, भारती। आलोट से हैं विष्णु, चंपा, किशन और रेखा। कुशी से हैं गणपत, सीता, ब्रजेश, ममता, गोविंद राम, पुष्पा, राजेश, शांति, नंद किशोर, राधेश्याम, रमा और हितेश। इसी के साथ काजगंज से जुड़ रहे हैं शिव कुमार, मंजू, देवेश और सुनीता, रामवीर, सरोज, सचिन, श्वेता। मिलोसी से हैं धर्मपाल, ममता, आशीष, रंजनी। शिकांगो से है यशपाल, पूनम, आकाश और सविता। बालूद से हैं वीरेंद्र, अंजुल, ललित और मधु। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को, गीत के बोल हैं चलते चलते।

साथियों, अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है प्यार जिंदगी है, गीत के बोल हैं मैं चाहता हूँ तुझको। फरमाइश करता है इस गीत के खंडवा से हैं मुरलीधर सावित्री, बलराम देव कुमार, रघुवीर निर्मला हेमराज इंदुबाई, खरगोन से हैं बाबूलाल कौशल्या, नंदलाल और जानकी, अलीराजपुर से हैं सोहन फूलवती, तेज सिंह कमलबाई, भीमराव मंगल सिंह वसंती, झाबुआ से हैं हरिदास भगवती, चंद्रपाल सुशीला, और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। पोकरड़ से हैं रूपा राम संतोषी, मदन और रतन कंवर, जगमाल नाथुराम कैलाशी, आकोट से हैं किशोर सिंह राजकंवर, पूना राम और कमली, बालूतरा से हैं तेजा राम और शिवराव फूलमती, नंदकिशोर कौशल्या, बलवीर और जमुना। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को, और यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

0: जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, जीवन में आनंदित रहने की गुंजाइश हमेशा रखें। श्रोताओं, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सफलता, पैसा, नाम और पहचान पाने की दौड़ में लगा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कशिश, इस दौड़ में सबसे ज्यादा अगर कुछ पीछे छूट रहा है तो वो है जीवन का आनंद। हम खुशियाँ भविष्य के किसी बड़े लक्ष्य से जोड़ देते हैं, जबकि असली खुशी तो हमारे आज में है, हमारे व्यवहार में है और हमारी सोच में छिपी होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे हमारे श्रोता साथियों से।
0: जी हाँ जागृति जी, तो बातें जरूर होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना जरूरी है और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी दस्तूर को निभाते हुए युवा साथियों, पहले मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ में।
1: जी हाँ,
0: आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, जीवन में आनंदित रहने की गुंजाइश हमेशा हमें रखनी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि गीत से पहले आपने बताया था जागृति जी कि हम हमारे जीवन के आनंद को कई बार बड़े लक्ष्यों से जोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जबकि असली खुशी तो श्रोता साथियों हमारे वर्तमान जीने में है। ऐसे में अगर हम बात करें कि आनंद का वास्तविक मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आनंद का मतलब केवल हंसना या मौज मस्ती करना नहीं होता। आनंद एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति जागृति जी परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो फिर भी उम्मीद और संतुलन बनाए रखता है। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती है श्रोता साथियों, किसी को पढ़ाई की चिंता होती है तो किसी को नौकरी की, तो किसी को परिवार की और किसी की भविष्य की भी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना सीखा है वही जीवन का वास्तविक आनंद ले पाए हैं।
1: जी हाँ, इसीलिए हमें समझना होगा कि आनंद किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होता है।
0: जी हाँ
1: कशिश, हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करते रहते हैं। जब नौकरी मिलेगी तब खुश हो जाएंगे, जब अपना घर होगा तब खुश हो जाएंगे, जब सारी समस्याएं खत्म होगी तब आनंद मिलेगा।
0: जी जी।
1: लेकिन श्रोताओं, सच तो ये है कि जीवन की सबसे सुंदर खुशियां छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। सुबह की ताजी हवा, परिवार के साथ बैठकर भोजन करना, दोस्त की एक सच्ची मुस्कान, किसी की मदद करके मिलने वाली दुआ, प्रकृति की सुंदरता, ये सभी ऐसे पल हैं जो बिना किसी खर्च के हमें आनंद दे सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: जो व्यक्ति इन छोटी छोटी खुशियों की कदर करता है कशिश, उसका जीवन हमेशा समृद्ध रहता है।
0: जी हाँ जागृति जी। साथी श्रोता साथियों, वर्तमान में जीने की कला को समझना भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे कि बहुत से लोग हमने देखे हैं जागृति जी, जो अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं। कुछ लोग भविष्य की चिंता में आज को खो देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे पास केवल वर्तमान ही है।
1: बिल्कुल,
0: हम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख जाएं साथियों, तो तनाव अपने आप ही कम होने लगता है।
1: जी हाँ,
0: आज का एक अच्छा दिन कल की अच्छी यादें बन जाता है श्रोता साथियों, इसलिए वर्तमान को बोझ नहीं बल्कि अवसर आपको समझना है।
1: बिल्कुल कशिश, आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम समझने लगते हैं। कोई महंगी गाड़ी दिखाता है, कोई विदेश यात्रा की तस्वीर डालते हैं, कोई अपनी उपलब्धियां साझा करते हैं, लेकिन साथियों हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल,
1: तुलना करने से आत्मविश्वास हमारे अंदर ही कम होता है और आनंद भी हमारे अंदर समाप्त होने लगता है। इसलिए अपनी तुलना केवल अपने कल से कीजिए, यदि आज हम कल से बेहतर हैं, तो यही हमारी सफलता है।
0: जी हाँ जागृति जी। साथ ही इसमें सकारात्मक सोच का भी महत्व होता है। जैसे कि सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है साथियों कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि हम समस्याओं का सामना हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ करें।
1: बिल्कुल,
0: हर कठिनाइयां हमें कुछ नया सिखाने आती है जागृति जी। हर असफलता हमें आगे बढ़ने की तैयारी कराती है साथियों। ऐसे में जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख को खोज लेता है वह कभी निराश नहीं होता।
1: जी हाँ, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि जीवन में आनंद होने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की गुंजाइश हमारे अंदर जिंदा होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें हम निरंतर आज के इस कार्यक्रम में जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जीवन में आनंदित रहने की गुंजाइश हमेशा जिंदा रखनी चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की थी। यही हम जानते हैं कि श्रोताओं, हम अक्सर उन चीजों की चिंता करते हैं जो हमारे पास नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कभी उन चीजों के लिए धन्यवाद नहीं देते जो हमारे पास है। एक परिवार, अच्छे मित्र, स्वस्थ शरीर, शिक्षा, जीवन जीने का अवसर, ये हमें प्रतिदिन इन बातों के लिए ईश्वर और जीवन को धन्यवाद करना होगा, तो हमारे भीतर संतोष और आनंद दोनों बढ़ने लगेंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर साथियों को हम बताएं तो मन और शरीर दोनों का स्वस्थ रहना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि आनंदित रहने के लिए केवल धन पर्याप्त नहीं होता साथियों, यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा और मन अशांत रहेगा तो कोई भी सफलता आनंद नहीं दे पाएगी।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में आप प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम करें, योग और ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाएं, पर्याप्त रूप से नींद लें श्रोता साथियों, और संतुलित भोजन की आदत को अपनाएं। साथ ही डिजिटल दुनिया से भी कुछ समय विराम लीजिए। ऐसे में साथियों, स्वस्थ शरीर और शांत मन आनंदमय जीवन की सबसे मजबूत नींव होती है। जागृति जी,
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारी जो रुचियां हैं उन्हें हमें समय देना होगा। जैसे कि हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई प्रतिभा होती है।
1: जी जी।
0: किसी को संगीत पसंद होता है, किसी को चित्रकारी पसंद होती है, किसी को लेखन, किसी को बागवानी और किसी को खेल। जब हम अपनी रुचियों के लिए समय निकालते हैं कशिश, तब मन को नई ऊर्जा मिलती है। इसीलिए केवल काम ही जीवन नहीं, जीवन में शौक भी उतने ही जरूरी होते हैं।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ साथियों, आप सभी ने सुना ही होगा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। ये कहा जाता है कि खुशी एक दौलत है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी उदास व्यक्ति को हौसला देना, किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग करना या किसी बुजुर्ग का सम्मान करना श्रोता साथियों, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो हमारे भीतर गहरा संतोष पैदा करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और देखा जाए जागृति जी तो यही सच्चा आनंद है।
0: जी हाँ कशिश, हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आज हमारे सामने अवसर भी बहुत हैं और चुनौतियां भी बहुत हैं।
1: बिल्कुल,
0: प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है, लेकिन याद रखिए, सफल वही है जो अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। अपने सपनों का पीछा जरूर कीजिए, लेकिन अपनी मुस्कान की कीमत पर नहीं।
1: जी हाँ,
0: काम कीजिए, सीखते रहिए, असफलताओं से घबराइए मत, और हर दिन अपने लिए कुछ ऐसे पल जरूर निकालिए जो आपको भीतर से खुशी दे। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं आनंदित रहता है वही अपने परिवार और समाज, देश में सकारात्मक ऊर्जा फैला सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि श्रोता साथियों, हमारा जीवन अनमोल है, इसे केवल जिम्मेदारी और चिंताओं में मत बिताइए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, स्वयं का सम्मान कीजिए साथियों, और दूसरों के जीवन में भी खुशियों का कारण बनिए। याद रखिए कि आनंद कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जो हर परिस्थिति में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेता है। जागृति जी, वही वास्तव में समृद्ध और सफल कहलाता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि आनंदित रहना केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक कला भी है। परिस्थितियाँ हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती है श्रोताओं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उनका सामना मुस्कुरा कर करना हमारे हाथ में ही होता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को पहचानता है, कृतज्ञता के भाव को रखता है, दूसरों के जीवन में भी मुस्कान बांटता है, वही वास्तव में सफल और समृद्ध जीवन जीता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमें ये याद रखना होगा श्रोताओं कि धन, पद और प्रसिद्धि तभी सार्थक है जब मन प्रसन्न हो। इसलिए हमें अपने परिवार, मित्र, प्रकृति और समाज के साथ मधुर संबंध बनाने होंगे, अच्छी सोच को अपनाना होगा। जब हम स्वयं खुश रहते हैं तभी दूसरों को भी खुश रहने की प्रेरणा दे सकते हैं। इसीलिए याद रखिए श्रोता साथियों, खुशी मंजिल से नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका है।
1: बिल्कुल,
0: जो मुस्कुराना सीख लेता है वह हर कठिनाई में उम्मीद की नई किरण भी खोज लेता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि जीवन हमें केवल जीने के लिए नहीं बल्कि हर पल को महसूस करने और उसका आनंद लेने के लिए मिला है। दोस्तों, सुख और दुख, सफलता और असफलता, जीत और हार, ये सभी जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं। यदि हम हर कठिनाई के कारण अपनी मुस्कान खो देंगे तो जीवन का सबसे सुंदर पक्ष हमसे दूर हो जाएगा साथियों।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जरूरी है कि हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर खुश रहना सीखें।
0: जी हाँ, इसलिए कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आनंद वही जो मन को उजियारा दे, हर दुख में भी जीने का सहारा दे, धन दौलत से बढ़कर इसकी पहचान है, आनंद में जीवन ही सच्चा वरदान है।
1: बिल्कुल,
0: मुस्कानों से अपना संसार सजाए, प्रेम करुणा और सद्भाव बढ़ाए, आनंद की ज्योति हर दिल में जलाए, खुश रहकर खुशियों का संदेश फैलाए। श्रोता साथियों, आनंद जीवन का सबसे अनमोल धन है और ये बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे विचारों, संतोष प्रेम और सेवा की भाव में ही बसता है। जिस
1: हाँ।
0: व्यक्ति ने आनंद को अपना साथी बना लिया उसके लिए हर दिन एक नई उम्मीद और हर पल एक नया उत्सव बन जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी रही और हमने जाना कि किस प्रकार से जीवन को हमें आनंद से जीना है और जो आनंदित रहने की जो गुंजाइश होती है उसे हमें कैसे बनाकर रखना है।
0: बिल्कुल,
1: तो बातें जैसा कि पूरी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट, कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं दोस्तों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों को विज्ञापनों के प्रभाव से कैसे बचाएं।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, आज का बच्चा पहले की तुलना में कहीं अधिक जानकारी से घिरा हुआ है। पहले बच्चे केवल कुछ समय के लिए टीवी देखते थे, लेकिन आज बच्चे मोबाइल फोन, इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, शॉपिंग ऐप और कई डिजिटल माध्यम उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं।
0: बिल्कुल,
1: इन सभी माध्यमों पर लगातार ऐसे विज्ञापन दिखाई देते हैं कशिश, जो बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रंग बिरंगे दृश्य, तेज संगीत, कार्टून पात्र, सुपर हीरो, खिलौने, चॉकलेट, चिप्स, मीठे पे, महंगे कपड़े और नए नए गैजेट्स बच्चों को बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं।
0: जी हाँ,
1: तो आज कार्यक्रम में हम यही जानने वाले हैं कि बच्चों को हम विज्ञापनों के प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो बातें आज के इस कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए साथियों को हम कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं, बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों को विज्ञापनों के प्रभाव से कैसे बचाया जाए।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि इंद्रिले जी, बच्चों का मन बहुत ही सरल और जिज्ञासु होता है। वे जो देखते हैं उसे सच मान लेते हैं। श्रोता साथियों, उन्हें यह समझ नहीं होती है कि विज्ञापन का उद्देश्य किसी वस्तु को बेचने के लिए लोगों को आकर्षित करना होता है। कई बार विज्ञापन किसी वस्तु को इतना आकर्षक बना देते हैं अंजलि जी कि बच्चे उसे अपनी जरूरत समझने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जबकि वास्तव में वह केवल उनकी इच्छा होती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आजकल कई बच्चे किसी चीज की आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि विज्ञापन देखकर उसे खरीदने की जिद करने लगते हैं।
1: जी हाँ,
0: कभी नया खिलौना, कभी नया मोबाइल गेम, कभी पैकेट वाला नाश्ता या कोई महंगा उत्पाद। यदि उनकी बात पूरी न हो तो वे नाराज हो जाते हैं या उदास महसूस करने लगते हैं। और धीरे धीरे ये आदत उनके स्वभाव का हिस्सा बन सकती है।
1: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि खाने पीने की चीजों के विज्ञापन बच्चों को बहुत प्रभावित करते हैं। टीवी और मोबाइल पर बार बार दिखाई देने वाले चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, कैंडी, नूडल्स और अन्य पैकेट्स वाले खाद्य पदार्थ बच्चों को अधिक आकर्षित करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे इन्हें स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक समझने लगते हैं, जबकि इनका अत्यधिक सेवन उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: परिणाम स्वरूप बच्चे घर के पौष्टिक भोजन से दूरी बनाने लगते हैं। कहना चाहेंगे कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि विज्ञापनों का असर केवल खान पान तक सीमित नहीं रहता। कई बार बच्चे महंगे कपड़े, जूते, खिलौने या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपनी पहचान का हिस्सा मानने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे उनमें तुलना की भावना बढ़ सकती है। यदि किसी दोस्त के पास कोई नई चीज हो कशिश, तो वे भी वैसी ही चीज पाने की इच्छा करने लगते हैं। इससे संतोष की भावना कम होती है और अनावश्यक इच्छाएं बढ़ने लगती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही अगर बात करें तो श्रोता साथियों, ऑनलाइन गेम और मोबाइल एप्स में आने वाले विज्ञापन भी बच्चों को प्रभावित करते हैं। कई बार तो साथियों वे किसी गेम में आगे बढ़ने के लिए पैसे खर्च करने या नई चीजें खरीदने की इच्छा करने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बिना समझ के किए गए ऐसे निर्णय अंजलि जी आर्थिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं होते। दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका हमारी यानी कि माता पिता की होती है। बच्चों की हर जिद पूरी करना प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम उन्हें सही और गलत का अंतर समझाने में है। साथियों,
1: जी हाँ,
0: यदि बच्चा किसी विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई वस्तु मांगे तो उसे डांटने के बजाय शांति से आप समझाएं कि हर चमकने वाली चीज उपयोगी नहीं होती। उन्हें आप ये बताएं कि विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना है, इसलिए हर दावा वास्तविक नहीं होता।
1: जी हाँ कशिश, परिवार को बच्चों के साथ बैठकर टीवी देखना चाहिए और समय समय पर विज्ञापनों के बारे में सरल भाषा में चर्चा करनी चाहिए। बच्चों से पूछें कि उन्हें विज्ञापन में क्या अच्छा लगा, क्या वास्तव में उसकी आवश्यकता है। इस प्रकार के बच्चे धीरे धीरे सोच समझकर निर्णय लेना सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों का स्क्रीन टाइम भी सीमित होना चाहिए। जितना अधिक समय वे मोबाइल और टीवी के सामने बिताएंगे, उतना ही अधिक विज्ञापनों के संपर्क में आएंगे। यदि उनके समय का एक हिस्सा खेल, किताबों, चित्रकला, संगीत, बागवानी या परिवार के साथ बातचीत में बीतेगा तो उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से रचनात्मक गतिविधियों की ओर चला जाएगा।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हम बातें कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि विद्यालयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि शिक्षकों को बच्चों को यह समझाना चाहिए कि विज्ञापन और वास्तविकता में अंतर होता है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों में तार्किक सोच विकसित करनी आवश्यक है ताकि वे हर दिखाई देने वाली बात पर तुरंत विश्वास न करें।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब मोबाइल और इंटरनेट तेजी से पहुंच रहे हैं, इसलिए गांव के परिवारों को भी जागरूक रहना होगा। बच्चों को ये सिखाना होगा कि सादा जीवन, पौष्टिक भोजन, मेहनत, ईमानदारी और संतोष का कोई विज्ञापन नहीं होता, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: जी हाँ।
0: यह भी आवश्यक है कशिश कि माता पिता स्वयं भी अनावश्यक खरीदारी से बचें। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। यदि परिवार हर नई चीज देखकर उसे खरीदने की आदत बना ले तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार अपनाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि परिवार आवश्यकता और इच्छा का अंतर समझकर निर्णय लेगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि विज्ञापन अपने आप में बुरे नहीं होते, वे हमें नई जानकारी भी देते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझना आवश्यक है कि हर विज्ञापन का उद्देश्य किसी वस्तु या सेवा की ओर आकर्षित करना होता है। सही जानकारी, परिवार का मार्गदर्शन, सीमित स्क्रीन टाइम और अच्छे संस्कार बच्चों को विज्ञापनों के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चे सोच समझ कर निर्णय लेना सीख जाते हैं कशिश, तब वे केवल अच्छे उपभोक्ता ही नहीं बल्कि जागरूक, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं।
1: जी हाँ दिले जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से साथियों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आज के समय में बच्चों का बचपन केवल घर, स्कूल या खेल के मैदान तक सीमित नहीं रह गया है। डिजिटल दुनिया ने उनके अनुभवों का दायरा बहुत बड़ा कर दिया है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि हम बच्चों को केवल तकनीक का उपयोग करना ही न सिखाएं, बल्कि उसका सही उपयोग और समझदारी से उपयोग करना भी सिखाएं।
0: जी हाँ
1: अंजलि जी, विज्ञापनों से पूरी तरह बच पाना संभव

0: नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव को समझना और सही निर्णय लेना अवश्य सिखाया जा सकता है बच्चों को। यही समझ बच्चों को भविष्य में आत्मनिर्भर और विवेकशील बनाती है दोस्तों। साथ ही हमारे बच्चों को ये भी समझाने की जरूरत है कि किसी वस्तु का मूल्य उसके आकर्षक पैकेट, चमकदार प्रचार या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रचार करने से नहीं होता।
1: जी जी,
0: किसी भी वस्तु की वास्तविक उपयोगिता, उसकी गुणवत्ता और उसकी आवश्यकता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है साथियों। यदि बच्चे छोटी उम्र से ही जरूरत और चाहत के बीच का अंतर समझना सीख जाएंगे तो वे आगे चलकर अनावश्यक खर्च, दिखावे की प्रवृत्ति और दूसरों से तुलना करने जैसी आदतों से भी बच सकते हैं। अंजलि जी,
1: बिल्कुल यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि माता पिता, शिक्षक और परिवार के अन्य सदस्य बच्चों के पहले मार्गदर्शक होते हैं। यदि घर का वातावरण संवाद, विश्वास और समझ से भरा होगा कशिश, तो बच्चे अपनी हर जिज्ञासा और इच्छा खुलकर साझा करेंगे। इससे उन्हें सही दिशा देना आसान होगा। बच्चों की बात सुनना, उसकी भावनाओं को समझना और उन्हें सोचने समझने के लिए प्रेरित करना किसी भी रोक टोक से अधिक प्रभावी तरीका है।
0: जी हाँ।
1: जब बच्चे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तब श्रोता साथियों उनमें जिम्मेदारी और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: समाज की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कशिश, कि विद्यालय, आंगनबाड़ी और स्थानीय संस्थाएं यदि समय समय पर मीडिया साक्षरता, संतुलित जीवन शैली और जागरूक उपभोक्ता बनने जैसे विषयों पर चर्चा करे तो बच्चे और अभिभावक दोनों अधिक सजग बन सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जागरूकता ही वह शक्ति है श्रोता साथियों जो गलत प्रभावों से बचाने का सबसे प्रभावी साधन बनती है। हमें ये भी याद रखना होगा कि बच्चों को सबसे अधिक खुशी महंगी चीजों से नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए समय, खुलकर खेलने के अवसर, अच्छी कहानियों, रचनात्मक गतिविधियों और अपनेपन से मिलती है।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम उनके जीवन में इन अनुभवों को बढ़ाएंगे तो चमकदार विज्ञापनों का आकर्षण अपने आप कम होने लगेगा। बच्चों का आत्मविश्वास किसी ब्रांड से नहीं बल्कि उनके संस्कार, ज्ञान, कौशल और परिवार के सहयोग से बनता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथियों हम अपने बच्चों को केवल समझदार उपभोक्ता नहीं बल्कि जागरूक, विवेकशील और मूल्यनिष्ठ नागरिक बनाने का संकल्प ले सकते हैं। उन्हें यह सिखाएं साथियों कि जीवन की सबसे अनमोल चीजें बाहर नहीं मिलती, वे परिवार के प्रेम, अच्छे संस्कार, स्वस्थ आदतें, ईमानदारी, मेहनत और सही सोच से मिलती है। अंजलि जी, जब बच्चे हर चमकती हुई चीज के पीछे भागने के बजाय सोच समझ कर निर्णय लेना सीख जाएंगे
1: जी जी,
0: तभी वे अपने जीवन के सही रास्ते चुनते हैं और यही सीख उन्हें आत्मनिर्भर, संतुलित, जिम्मेदार इंसान बनाती है।
1: बिल्कुल।
0: और यही एक मजबूत परिवार, जागरूक समाज और उज्जवल भविष्य की सबसे सच्ची पहचान है।
1: जी हाँ। तो कशिश, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरीके से हम बच्चों को विज्ञापनों के प्रभाव से बचा सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपडो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करा हूं अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की भाई बोनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थे जह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो किसान भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि आपने जे गांधी जी ने स्वराज ना जे विचार हता एने माध्यम तकी आपने खेती में हूँ परिवर्तन लावी शका। तो किसान भाई बोनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तकी घणा कानी वाते थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू कर एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते। तो भाई बोनो आप हमरते रहजो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: ભાઈનબુનું ગીત તો આઈશું પૂરું, નેણ ગીત બાદ એક વખત ફેરી આપણે ભાઈ બનુનું અમે ઘણીમાન સ્વાગત કરો હો અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈ બનુ ગીતે કે પહેલા આપને વિષય ઉતાર દીધું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હા ગાંધી સ્વરાજના જે વિચાર હતા એને અનુસાર આપણે ખેતી મેં હું પરિવર્તન કરી શક. તો ભાઈ બનુ અણ વિષય માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થી વિષય વિશેષજ્ઞ જોડી રહે ને એને થકી આપણે વાત કરી રહી હે આપણે રેડિયો સાથી જાગૃતિ ભટ્ટ. તો સપ્તાહ કે પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત મોરે કરો આપણી વાતે.
1: શ્રોતાઓ આજે અમારે બીચ મેં દેશ કે જાને માને કૃષિ વિશેષજ્ઞ કિસાન ચિંતક વ ગાંધીવાદી શ્રી કપિલ ભાઈ હમારે વાગર રેડિયો કે સાથ જોડ રહે હે. તો સર સબસે પહેલે આપકો નમસ્તે.
2: નમસ્તે
1: સર, આપકા સ્વાગત કરતે હૈ હમારે આજ કે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. ઓર સબસે પહેલે હમ આપકા પરિચય જાનના ચાહેંગે.
2: નમસ્તે વાગર રેડિયો કે શ્રોતાઓ કો, મેં ગુજરાત મેં બડોદા મેં રહેતા હું ઓર કૃષિ વિજ્ઞાન કા વિદ્યાર્થી રહા, કૃષિ મેં પઢાઈ ભી કી ઓર કરીબ 35 સાલો સે દેશ મેં જૈવિક ખેતી કી દિશા મેં જો ભી કામ હો પાય ઉસમે થોડા સહયોગ કરતા હું.
1: બિલકુલ.
2: પોલિસી લેવલ કે ઉપર, વિજ્ઞાન કે લેવલ કે ઉપર, થોડે સંશોધન કે લેવલ કે ઉપર, કિસાનો કો અચ્છી તકનીક સિખાઈ જાય, ઉનકો બાજાર દિયા જાય, એસે હર ક્ષેત્ર મેં કુછ ને કુછ થોડા છોટા મોટા કામ કરતા રહેતા હું.
1: સર યે બહોત અચ્છી બાત હૈ કિ આપ કિસાનો કે લિયે ઇતના સબ કુછ કરતે હૈ. તો આજ હમ આપસે જાનના ચાહેંગે કિ વર્તમાન પરિસ્થિતિ મેં કિસાનો કે લિયે ये जो दौर है वो कैसा है और उससे हमारी जो स्थानीय स्तर पर इसे कैसे निपटा जा सकता है.
2: अच्छा सवाल है. किसान अन्नदाता है और किसान ये महसूस करे कि उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती.
1: बिल्कुल.
2: खाना किसानों के बिना देश में दुनिया में पैदा नहीं होता है.
1: बिल्कुल.
2: उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती.
1: बिल्कुल.
2: खाना किसानों के बिना देश में दुनिया में पैदा नहीं होता है.
1: बिल्कुल.
2: मगर आपदा ये है कि किसानों की स्थिति रोज न रोज दिक्कत वाली हो जाती है. तो वो कुछ हमारे तौर तरीके, विकास की दिशाएं और विज्ञान की गलत उपयोग कई बार और सरकारी कुछ नीतियों से भी ये संभव होता है कि किसानी करना इतना आसान नहीं रहता
1: नहीं है. बिल्कुल.
2: भले ही वो बहुत ही अनिवार्य व्यवसाय है. तो मैं दो तीन बातों को ऊपर थोड़ा कहना चाहूँगा इस विषय में कि अपने संसाधनों के को सही तरीके से वैज्ञानिक रूप में इस्तेमाल करे, कार्यक्षम रूप में इस्तेमाल करे, जमीन पानी का रखरखाव करे, पाकों में वैविध्य लाए, अपनी ज़रूरतों को पहले ध्यान में रख के बुवाई करे और अपने खाने के लिए शुद्ध पैदा करें. अगर इतना जो किसान शुरू कर लेते हैं तो शायद वो बाजार के शोषण का से मुक्ति होगी कुछ हद तक और उसको थोड़ा ज्यादा संतोष प्राप्त होगा.
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि किस तरह से हमारे किसान भाई बहनों को ये वर्तमान जो परिस्थिति है उसे कैसे निपटा जा सके. तो जैसा कि आप बता रहे हैं सर कि हमारे जो किसान भाई बहन है वो अन्नदाता है और वही हम आज अगर बाजार के भरोसे बैठ जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा. यही हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि कृषि भोजन के लिए जो महत्वपूर्ण है हमारे किसान जो खेती करते हैं, परंतु आजकल हम देखते हैं कि वो बाजार उन्मुख होती जा रही है, उसका संतुलन हम किस प्रकार से कर सकते हैं.
2: ये दूसरा अहम सवाल है
1: जी.
2: देखिए बाजार अनिवार्य चीज है और नगद के आने से पहले भी लेन देन से भी तो बाजार चलता था. कहीं हाट चलती थी, कोई गेहूं देता था, उसके सामने चना लेता था. तो उस प्रकार से बाजार तो होनी चाहिए
1: जी सर.
2: और हमें पैसे की भी जरूरत है. बाजार पैसे सिर्फ बाजार में मिलते हैं, वो खेत में नहीं उगते, जंगल में नहीं उगते.
1: बिल्कुल.
2: न तो उसकी बारिश होती है.
1: जी जी.
2: तो बाजार में जाना तो जरूरी है.
1: जी जी.
2: मगर इस प्रकार से बाजार में जाए जहाँ पे हम अपनी शर्त पे अपना लेन देन कर पाए.
1: जी सर.
2: जैसे कि कुछ चीज बेचनी है तो जैविक किसान कहेगा कि भाई मेरे तो मुझे ये लौकी इस दाम से बेचनी है, उससे कम दाम में तो मैं नहीं देना चाहता.
1: जी जी.
2: तो अगर वो अपना दाम तय कर पाए, उस प्रकार की खेती करे, इस प्रकार की पैदावार करे, ये

0: प्रोसेस कर ले या तो जैविक प्रकार की कोई चीज कर ले या जो चीज बाजार में कम बनती है उस प्रकार की पैदावार करे ताकि वो दाम खुद तय करे तो उस बाजार का अपने हाथ में उपयोग कर सकता है।
1: बिल्कुल सर।
0: दूसरा, बाजार में जाने में खतरा है वो ध्यान में रखे, क्योंकि जिनसे हमें पैसा लेना है वो हमसे ज्यादा होशियार है।
1: बिल्कुल सर।
0: हाँ, तो वो कुछ ना कुछ तरीके से जो चीज ले लेगा उसका इतना दाम नहीं देता,
1: नहीं दे पाता।
0: किसानों का शोषण वहीं से शुरू
1: हो जाता है। बिल्कुल।
0: वो आप अपना धान बेचने के लिए जाए, मक्का बेचने के लिए जाए, मगर वो तय कर लेता है कि इसका किस दाम में ये ले लेना है।
1: जी।
0: तो अपनी शर्त के ऊपर जैसे मैंने बताया ऐसे बेचे, और हो सके तो कुछ चीजों में जैसे कि आप यूरिया डीएपी प्रकार के खाद, पेस्टिसाइड, बीज, ऐसी कुछ चीजें है जो अगर आप अपने आप बना लेते हैं, यूरिया नहीं बनाए मगर अपनी खाद बना ले, अपना दशपर्णी प्रकार से अर्क जंतुनाशक बना ले, तो इस प्रकार से जितना भी स्वावलंबन हो पाएगा उतना बाजार में जाने की और पैसे देने की जरूरत
1: नहीं होगी। बिल्कुल सही।
0: हाँ, ऐसे ही आम हमारे रोजमर्रा की जीवन में जैसे भी शायद टूथपेस्ट की जरूरत है या नहीं, उस प्रकार से भी सोचा जा सकता है कि सही में किन चीजों की जरूरत है। जैसे कि आज बिस्किट वगैरह भी बहुत गांव में चल, पैक फूड भी बहुत सारा चलने लग गया है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसी चीजों से अपने आप को बचाए, उसमें न तो ठीक से पोषण है और स्वास्थ्य के लिए नुकसान करता है कई चीज, तो उसमें तो कैसे हम खर्चा कम करें
1: उस पर जोर दे। बिल्कुल।
0: और बाजार में जब जाए तो कैसे बाजार से ज्यादा पैसे लेके आए, उस प्रकार का बाजार का उपयोग करेंगे तो बाजार हमें काम में आ सकता।
1: बिल्कुल सर। जैसा कि सर आपने बताया कि हमें जैविक खेती ऐसी करनी है जिससे हमारा कोई शोषण ना कर सके, तो जब जैविक खेती की बात चली है तो सर हम आपसे जैविक खेती के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई ऐसी जैविक खेती करें जिससे उनका किसी भी प्रकार से कोई शोषण न हो।
0: तो पहली बात बताई कि अपनी जरूरतों को पहले लिस्ट कर दिए, कितना मूंग चाहिए, कितनी दाल चाहिए, कितना मक्का चाहिए, कितना उड़ीद चाहिए, कितनी सब्जी चाहिए, कितना फल चाहिए।
1: जी।
0: हमारे पास इतनी अच्छी जमीन पानी है तो क्यों ना हम सारी चीजों को पहले पैदा कर ले। हम कल यहीं के बागदरा के ही कुछ किसानों को मिल रहे थे, तो बहुत सारे किसान हमें मिले जो अपनी जरूरतों को खुद पैदा कर लेते हैं, हमें इन चीजों को बाजार में जाने की जरूरत ही
1: नहीं है।
0: तो जैविक खेती का पहला सिद्धांत ये है कि जैसे अपनी थाली में विविधता चाहिए खाने के लिए, वैसे खेत में विविधता होनी चाहिए। तो फसलों में वैविध्य लाइए, खुद का खाद बना लीजिए और फलों को भी साथ में जोड़िए ताकि एक के बाद एक जब बारिश नहीं है तब भी कुछ न कुछ पैदावार उसमें से हमें मिलती रहे। बाजार के लिए भी मिलती रहे, खाने के लिए भी मिलती
1: जी
0: रहे।
1: सर।
0: मुझे ये भी लगता है कि प्रोसेसिंग का भी थोड़ा काम हम कर सकते हैं,
1: जी।
0: कुछ चीजों को सुखाना, अचार बनाना, जूस निकालना, जब सीजन में काम नहीं होता है तब, और उसका बाजार खड़ा करना या अपने गांव में आसपास के गांवों में उसको भी बेच के थोड़ा सा कमाई कर लेना और अपना ग्राम स्वावलंबन उस दिशा में भी। बिस्किट भी गांव में बन सकते हैं, अच्छे बिस्किट, नागली के बिस्किट या जिसको हम माल बोलते हैं,
1: जी।
0: हाँ, उसका बिस्किट भी बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो अच्छी चीजें सीखे और गांव में इस्तेमाल करे तो हम जैविक कृषि से बाजार तक के संबंध को इस प्रकार से बनाए ताकि प्राकृतिक स्रोतों का रखरखाव सही में हो, आने वाली पीढ़ी को जमीन पानी ठीक से दी जाए और इस पीढ़ी के लिए पैसे भी हमारे पास कुछ ज्यादा आ जाए।
1: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने बहुत अच्छी बातें हमारे किसान भाई बहनों को आप बता रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गांधी स्वराज के विचार के अनुरूप आज की जो खेती है उसमें हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो परिवर्तन क्यों जरूरी है।
0: गांधी जी कहे ये उनका नाम दे या न दे, मगर दुनिया भर के अनुभव तो यही है कि जितनी छोटी इकाई में समूह का संचालन होगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बड़े बड़े शहरों के इसको संभालना उतना आसान नहीं है, वहाँ की जिंदगी इतनी खराब होती जा रही है, हम गांवों को मजबूत करें, यही गांव की सोच है, गांधी जी की सोच है, सही विकास की सोच है।
1: जी सर।
0: जिसको गांधी जी ने ग्राम स्वावलंबन कहा, ग्राम स्वराज कहा, तो हर इकाई अपने आप में एक स्वराज का अनुभव करे, वो काम बहुत बाकी है।
1: जी।
0: हम ग्राम सभा को मजबूत करें, इस गांव के फसल, लोक आयोजन, पशुओं का आयोजन, जमीन पानी, जंगल, बारिश, वाटर मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को गांव साथ में मिलके तय करे कि बारिश का पानी कैसे बाहर जाने से रोक
1: सकते हैं, बिल्कुल।
0: हाँ, जंगलों का उपयोग कैसे सही तरीके से होगा ताकि उसका भी शोषण न हो जाए, जमीनों को कैसे संभालेंगे, अपना खाद गांव कैसे एक साथ में बना सकता है, क्या गांव के सभी पशुओं का चराना एक साथ में हो सकता है या एक इलाकों में उसका हो सकता है क्या
1: जी?
0: या इस प्रकार से कुछ सोच के सामूहिकता लाना और समूह में निर्णय लेना मुझे बहुत जरूरी लगता है।
1: बिल्कुल सर।
0: और साथ साथ में गांवों को दो चीज से मुक्त करने की जरूरत है तो गांव स्वावलंबन की दिशा में आसानी होगी, भ्रष्टाचार से मुक्त हो।
1: बिल्कुल, तभी हम मजबूत होकर अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो जैसा कि सर आपने जो परिवर्तन बताया कि किस तरह से हम हमारी जो परिवर्तन की आवश्यकता है इस तरह से करेंगे तो ये आवश्यकताएं भी पूरी होंगी और हमारा जो गांव है वो गांव का पानी गांव में रहेगा, गांव के बीच गांव में रहेंगे, जंगल नहीं कटेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो जैसा कि सर ये जो परिवर्तन है वो आपने बताया, उसमें किसान को और गांव को क्या करने की जरूरत है जिससे जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आ सके?
0: विज्ञान को ठीक से समझे, बाजार को ठीक से समझे और सामूहिकता बनाए रखें।
1: बिल्कुल सर।
0: और मुझे खास कहना यह है कि गांव के गरीबों की जिनकी आय कम है उनकी भी चिंता पहले करें, वो हमारे ग्राम परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा पहले रहा था।
1: जी सर।
0: हाँ, तो उनके बारे में सोचे तो शायद गांव का एक परिवार और गांव स्वावलंबन की दिशा में ठीक से जा पाएंगे। कुछ बिंदु मैंने पहले के अगले सवालों में भी उसके जवाब में बताए।
1: जी सर। तो जैसा कि सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई, तो अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
0: किसान भाई बहन और वाग्धारा के इस रेडियो प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके पास वागड़ रेडियो जैसी एक सर्विस है, वाग्धारा जैसी एक संस्था है। बहुत सारी संस्था इन इलाकों में काम करती है, इन संस्थाओं के हेतु और उद्देश्य को समझते हुए, कार्यकलापों को समझते हुए आप उनको सहयोग दे
1: जी।
0: तो वो अरस्परस बहुत अच्छा काम होगा। आज मैं दो दिन से वाग्धारा के कार्यक्रमों को किसानों को मिल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसानों को बहुत अच्छी तरह से इन मूलभूत बातों को लिए समझाया गया है, उनके दिमाग में वो चीजें बैठी है। महिलाएं भी कह रही है कि हम अपने बच्चों को जहर वाला खाना नहीं खिलाएंगे, बाजार से खरीद के नहीं खिलाएंगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रकार की कोई कार्यक्रम इस बहुत गुजरात से मैं हूँ, गुजरात के नज़दीक में ये चल रहा है, आदिवासियों के बीच में चल रहा है। बस आप उन सबको सहयोग देते रहे, वही शुभकामना है, वही हमारा कहना है। धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर। सीम के भाई बोनो अपड़े जागृति बोनी घनी असल तरीका तकी अपने जे विषय विशेषज्ञ जुड़े तक एणन तकी घना कानी बातें करी है। तो आशा करो हो क्या हंगरी बातें आपने गमी होंगा, क्योंकि टाइम थे गयो है हमारे अनस कार्यक्रम तकी सूट पड़वानू। तो सूट तो पड़ा पर साथे पहले हमरी लेकर कितने मोरे पड़ा सूटा।

0: हमरो हमरो हमरो घनी बोले पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मलिन जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हंग्र अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव।

0: की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके। शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा अपने अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाई ने बोनो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है।
5: हो भे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
4: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
5: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
4: होवे आज नाना ना कदम है ई आबा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
7: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
8: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं आदिवासी ज्ञान और प्रकृति से सीखने की संस्कृति को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जब आधुनिक दुनिया विकास की दौड़ में प्रकृति से दूर होती जा रही थी, तब आदिवासी समाज हमें ये सिखाता है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी गुरु है। जंगल उनका विद्यालय है, नदियाँ उनकी पाठशाला है, पर्वत उनके शिक्षक है, ऋतुएं उनकी जीवन पुस्तक है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, आदिवासी ज्ञान हमें ये बताता है कि प्रकृति पर अधिकार नहीं बल्कि उसके साथ संतुलित और सम्मानजनक जीवन ही सच्ची प्रगति है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। तो साथियों आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज पे। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बातें भी रही थी कि आज हमारा विषय रहने वाला है आपसे बातचीत का आदिवासी संस्कृति प्रकृति से सीखने की अनमोल परंपरा को लेकर।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, बात करें तो भारत की आत्मा गांव में बसती है, जैसा कि हम हमेशा कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो उसकी सबसे प्राचीन और जीवन संस्कृति आदिवासी समाज में बसती है। श्रोता साथियों, राजस्थान का वागड़ अंचल, जिसमें मुख्य रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले आते हैं, यह जो दो जिले हैं वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों, नदियों, घने वनों और समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं।
0: जी हाँ,
1: यहाँ किसान, यहाँ निवास करने वाली भील, गरासिया, डामोर, कंथोड़ी जैसी जनजातियाँ सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन जीती आई है। इनके लिए जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं है जागृति जी, बल्कि जीवन का आधार है।
0: बिल्कुल,
1: नदी केवल जल नहीं बल्कि संस्कृति की धारा है, और धरती केवल भूमि नहीं बल्कि माता भी है। आज जब पूरी दुनिया श्रोता साथियों जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब आदिवासी संस्कृति हमें प्रकृति के साथ संतुलित जीवन की प्रेरणा देती है।
0: बिल्कुल,
1: यह संस्कृति हमें बताती है कि विकास का वास्तविक अर्थ प्रकृति को नष्ट करना नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि वागड़ की सांस्कृतिक पहचान को लेकर हम बात करें हमारे श्रोता साथियों से, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को सामूहिक रूप से वागड़ क्षेत्र कहा जाता है।
1: जी जी।
0: माही नदी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, हरियाली और वन इस क्षेत्र की पहचान है। यहाँ की संस्कृति में सादगी है, मेहनत, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक जीवन की भावना स्पष्ट दिखाई देती है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ के लोग अपने पारंपरिक पहनावे, लोकगीतों, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, चित्रकला और लोक भाषा के माध्यम से अपने सांस्कृतिक विरासत को आज भी जीवित रखे हुए हैं। आधुनिकता के प्रभाव के बावजूद अपनी परंपराओं को संभाले रखना इस समाज की सबसे बड़ी विशेषता रही है।
1: जी हाँ जागृति जी, आदिवासी समाज प्रकृति को गुरु मानता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, वर्षा और ऋतुएं उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वे प्रकृति से धैर्य, संतुलन, सहयोग और अनुशासन सीखते हैं। श्रोता साथियों, पेड़ काटने से पहले नए पौधे लगाने की परंपरा, जल स्रोतों की सफाई, जंगलों की रक्षा और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील व्यवहार उनके जीवन दर्शन को दर्शाता है। वे उतना ही लेते हैं जितनी आवश्यकता हो,
0: बिल्कुल
1: शेष प्रकृति के लिए छोड़ देते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आदिवासी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी जल, जंगल और जमीन है। जंगल हमारे आदिवासी भाई बहनों को भोजन, फल, फूल, औषधियां, लकड़ी और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाते हैं। खेत हमारी आजीविका का आधार है, जबकि नदियां हमारे जीवन को ऊर्जा देती है।
1: बिल्कुल,
0: माही नदी तथा उसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र की संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों को समृद्ध बनाया है। जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग की परंपरा आज भी समाज की विशेष पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि वागड़ क्षेत्र के आदिवासी किसान प्राकृतिक खेती को महत्व देते हैं। वे जैविक खाद, गोबर की खाद और स्थानीय बीजों का उपयोग करते हैं। मिश्रित खेती, वर्षा आधारित कृषि और स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण उनकी खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं।
0: बिल्कुल,
1: कम संसाधन में अधिक उत्पादन करने की उनकी कला आज के टिकाऊ विकास मॉडल के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर की पहचान उनके लोक नृत्यों और लोकगीतों से भी है। गेर, गवरी और पारंपरिक भीली नृत्य केवल मनोरंजन नहीं है जागृति जी, बल्कि सामाजिक एकता, प्रकृति के प्रति आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक भी
0: जी
1: है। ढोल, मादल, थाली, बांसुरी की मधुर धुनों पर सामूहिक नृत्य समाज में प्रेम, भाईचारे, उत्साह का संचार करते हैं। लोकगीतों में प्रकृति, खेती, वर्षा, परिवार और सामाजिक जीवन का सुंदर चित्रण भी हमें देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज किस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आदिवासी ज्ञान और प्रकृति से सीखने की संस्कृति को लेकर, तो ये बातें निरंतर आज किस कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से लोक कला, लोक गीत और लोक नृत्य भी हमारे वागड़ क्षेत्र की पहचान है। श्रोता साथियों, वागड़ क्षेत्र में बेणेश्वर धाम का मेला विशेष महत्व रखता है, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। इसके अलावा होली, दीपावली, गवरी, नवाई और अन्य स्थानीय पर्व सामूहिक उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर जागृति जी लोग प्रकृति, पूर्वजों और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, ये तो आपने मेले और त्योहारों के बारे में बताया कि किस तरह के मेले हमारे वागड़ क्षेत्र में लगते हैं और त्योहार का क्या महत्व है। यही पारंपरिक औषधीय ज्ञान के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताए तो श्रोताओं, आदिवासी समाज के पास जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान है। अनेक औषधीय पौधों की पहचान, उनका उपयोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव के आधार पर आगे बढ़ता आया है और आधुनिक विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं अंजलि कि आदिवासी समाज में हम की भावना मैं से अधिक महत्वपूर्ण है। खेती, घर निर्माण, सामाजिक कार्य और उत्सव सभी मिलजुल कर किए जाते हैं। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना हमारे आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। ये सामुदायिक भावना आज के समाज के लिए भी प्रेरणा है, जहाँ व्यक्तिगत जीवन शैली बढ़ती जा रही है।
0: जी हाँ जागृति जी, यहाँ पर शिक्षा, रोजगार, पलायन, जंगलों का घटता क्षेत्र, पारंपरिक ज्ञान का लुप्त होना और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव आदिवासी संस्कृति के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है।
1: बिल्कुल,
0: नई पीढ़ी यदि अपनी भाषा, लोकगीत, लोक नृत्य और परंपराओं से दूर होती गई श्रोता साथियों, तो यह अमूल्य धरोहर कमजोर पड़ सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विकास के साथ साथ सांस्कृतिक संरक्षण भी समान रूप से ध्यान दिए जाए। आज के युवाओं की जिम्मेदारी है कि जागृति जी, वे अपनी संस्कृति पर गर्व करें, लोक कला, लोक भाषा को आगे बढ़ाएं, पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं और आधुनिक शिक्षा के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहें।
1: बिल्कुल,
0: यही सच्चा विकास होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर की आदिवासी संस्कृति केवल एक समुदाय की पहचान नहीं है, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक समृद्धि की अमूल्य धरोहर है।
0: बिल्कुल,
1: ये संस्कृति हमें ये सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान, सामुदायिक सहयोग, सादगी, आत्मनिर्भरता और संतुलित जीवन ही मानवता का वास्तविक मार्ग है। आज आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम आदिवासी समाज को केवल विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात न करें, बल्कि उन प्रकृति आधारित जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण की भावना और पारंपरिक ज्ञान से भी सीखे। अगर हम उनकी इस अनमोल विरासत को सुरक्षित रख पाए तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ, पर्यावरण समृद्ध, संस्कृति और मानवीय मूल्यों से भरपूर भारत का निर्माण कर सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आदिवासी संस्कृति हमें यह संदेश देती है कि धरती हमारे पूर्वजों की संपत्ति नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की अमानत है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें इस महान सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेकर प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। यह हमारी संस्कृति का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा और सच्चे विकास की दिशा है।
1: जी हाँ, हम कह सकते हैं कि आदिवासी संस्कृति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित, संवेदनशील और आत्मनिर्भर जीवन का जीवन दर्शन है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, इस संस्कृति ने सदियों से ये सिद्ध किया है कि सच्ची समृद्धि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन में नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और सम्मान में निहित है। जल, जंगल और जमीन के प्रति हमारे आदिवासी समाज का प्रेम, सामुदायिक सहयोग की भावना, लोक ज्ञान, लोक कला और प्रकृति से सीखने की परंपरा आज भी मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्रोताओं, आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक विघटन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब हमारे वागड़ की आदिवासी संस्कृति हमें एक नई दिशा दिखाती है। अंजलि, ये संस्कृति हमें सिखाती है कि विकास तभी सार्थक है जब उसमें प्रकृति का संरक्षण, संस्कृति का सम्मान और समाज का कल्याण शामिल हो। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस अमूल्य धरोहर को केवल संग्रहालयों तक सीमित न रखें, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, नई पीढ़ी तक पहुंचाएं और गर्व के साथ इसका संरक्षण करें।
0: बिल्कुल जागृति जी, आदिवासी ज्ञान केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा है। यदि मानवता को सुरक्षित, संतुलित और टिकाऊ विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए तो हमें आदिवासी समाज से प्रकृति के साथ सामंजस्य, संयम और सह अस्तित्व की संस्कृति सीखनी होगी। प्रकृति से सीखना ही जीवन को बचाना है और यही सच्चे विकास की पहचान है।
1: जी हाँ, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आदिवासी संस्कृति, ज्ञान और प्रकृति के बारे में बातचीत की, अब देख पा रहे हैं कि समय का मान रखना होगा। समय का मान रखते हुए इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं अंजलि, और आशा करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारे श्रोता साथियों को जरूर पसंद आई होंगी। श्रोताओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमें अधिक जानकारी के लिए हमारी ईमेल आईडी पर भी आपकी प्रतिक्रिया दे सकते हो। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है गांव की जीवन शैली का हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव को लेकर।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज जब हम शहरों में तनाव, प्रदूषण, अनियमित खान पान और भागदौड़ भरी जिंदगी लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है ये देखते हैं, वहीं गांव की सरल, प्राकृतिक और संतुलित जीवन शैली आज भी स्वस्थ जीवन का एक बड़ा उदाहरण मानी जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग बिना जिम जाए भी इतने मजबूत कैसे रहते हैं? क्यों गांव के लोग पहले कम बीमार पड़ते थे? आखिर गांव की जीवन शैली में ऐसा क्या है श्रोता साथियों जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहता है? तो आज कार्यक्रम में इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी।
0: जी हाँ।
1: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत।
0: तो श्रोता साथियों, आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं गांव की जीवन शैली का हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि भारत को गांव का देश कहा जाता है। आज भी देश की बड़ी आबादी श्रोता साथियों गांव में निवास करती है। गांव केवल रहने का स्थान नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति का सुंदर संगम है।
1: बिल्कुल,
0: गांव का वातावरण स्वच्छ, शांत और प्राकृतिक होता है। श्रोता साथियों, यहां की जीवन शैली सरल, संतुलित और प्रकृति के अनुरूप होती है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और प्रदूषण से दूर गांव का जीवन मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, गांव का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है।
0: जी हाँ,
1: सुबह सूरज निकलने से पहले जागना, ताजी हवा में घूमना, खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल करना और दिन भर शारीरिक श्रम करना, ये सब ऐसी आदतें हैं श्रोता साथियों जो बिना किसी अतिरिक्त खर्च के शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। शहरों में लोग घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं जबकि गांव में दैनिक कार्य ही शरीर के लिए प्राकृतिक व्यायाम बन जाते हैं। गांव में आज भी कई स्थानों पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं।
0: जी हाँ,
1: हरी भरी फसलें, खुले मैदान, कम प्रदूषण और ताजी हवा शरीर को भरपूर ऑक्सीजन देती है।
0: जी हाँ,
1: शुद्ध हवा से फेफड़े मजबूत रहते हैं, सांस संबंधित बीमारियां कम होती है, मानसिक तनाव घटता है, नींद अच्छी आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगी सुबह की खुली हवा में कुछ देर टहलना किसी दवा से कम नहीं माना जाता।
0: जी हाँ,
1: गांव का भोजन अक्सर हम देखते हैं कि ताजा और मौसम के अनुसार घर पर बना होता है, जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, गेहूं, दालें, हरी सब्जियां, छाछ, दही, दूध, घी, गुड़, तेल, मूंगफली। श्रोता साथियों, इनमें विटामिन, खनिज, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसके विपरीत पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों को स्वाभाविक रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल करना, पैदल चलना, पानी भरना, बागवानी करना और घरेलू कार्य करना उनके जीवन का हिस्सा होते हैं। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि यह श्रम किसी व्यायाम से कम नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: इससे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां स्वस्थ रहती हैं और रक्त संचार वो बेहतर रहता है।
1: बिल्कुल,
0: नियमित शारीरिक गतिविधियों से श्रोता साथियों मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी समस्या होती है वो भी नहीं होती है।
1: जी हाँ मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि गांव के लोग खेतों में काम करते हैं।
0: जी,
1: चलना, झुकना, उठना, पशुओं की सेवा करना, पानी भरना, लकड़ी लाना, ये सब शरीर को सक्रिय रखते हैं। ऐसे लोग मोटापे से कम प्रभावित होते हैं, मधुमेह का खतरा कम रहता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हड्डियां मजबूत रहती है। इसी के साथ गांव में अभी भी बहुत से लोग सूर्योदय के साथ जागते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये आदत शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित रखती है। समय पर सोने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आंखों को आराम मिलता है, शरीर की मरम्मत अच्छी तरह होती है और थकान भी कम होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
2: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले मनीषा हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि गांव की जीवन शैली का हमारे स्वास्थ्य पर किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि गांव में लोगों के बीच आपसी मेलजोल अधिक होता है।
1: जी हाँ।
0: किसी के घर खुशी हो या दुख, पूरा गांव साथ खड़ा होकर रहता है। ये सामाजिक सहयोग तनाव को कम करता है, बुजुर्गों के अनुभव, परिवार का साथ और सामूहिक जीवन, मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: गांव में कई घरेलू उपाय पीढ़ियों से अपनाए जा रहे हैं मनीषा, जैसे कि हल्दी वाला दूध, तुलसी, अदरक, नीम, गिलोय, एलोवेरा, अजवाइन, सौंफ। हालांकि गंभीर बीमारियां होने पर डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा जरूरी होता है। गांव में बच्चों को खुला मैदान मिलता है, वे दौड़ते हैं, खेलते हैं, मिट्टी से जुड़ते हैं, पेड़ों के बीच समय बिताते हैं। इससे शरीर मजबूत बनता है, आंखों पर मोबाइल का कम असर पड़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सामाजिक व्यवहार भी विकसित होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें कि मानसिक स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि गांव का शांत वातावरण मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। वहाँ शोर शराबा कम होता है, प्रदूषण कम होता है और प्राकृतिक सुंदरता अधिक होती है।
0: बिल्कुल,
1: पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाट, खेतों की ताजगी और स्वच्छ वातावरण मन को सुकून देते हैं। श्रोता साथियों, इससे हम देखते हैं कि हमारे अंदर का तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं हैं वो खत्म होने लगती हैं।
0: बिल्कुल,
1: परिवार और समाज का सहयोग है श्रोता साथियों, वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है।
0: बिल्कुल मनीषा, गांव में बुजुर्ग अक्सर सक्रिय रहते हैं, वे खेती, पशुपालन, बागवानी और घरेलू कार्यों में भाग लेते रहते हैं। सक्रिय जीवन उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद करता है। गांव में मौसम के अनुसार भोजन किया जाता है, गर्मी में छाछ, बेल, ककड़ी, तरबूज, बरसात में बाजरे की राब, दालें और गर्म भोजन, सर्दियों में तिल, गुड़, गोंद के लड्डू, मेथी, सरसों का साग, मौसमी भोजन शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव में लोग मिलकर खेतों में काम करते हैं। तालाब साफ करना, पौधा रोपण, गांव की सफाई, त्योहार मनाना, ये गतिविधियां सामाजिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करती हैं।
1: जी हाँ,
0: हालांकि गांव में भी अब कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं मनीषा। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे जंक फूड की ओर बढ़ रहे हैं, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, शारीरिक श्रम जो है हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे गाँव में भी कम होता दिखाई दे रहा है, प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है और देर रात तक जागने की आदत बन रही है। यदि इन आदतों में नहीं बदलाव किया गया तो गांव भी शहरों जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकता है। हमें ये करना है श्रोता साथियों कि हम प्रतिदिन सुबह जल्दी उठें, कम से कम 30 मिनट पैदल चलें, मोटे अनाज को भोजन में शामिल करें, घर का ताजा भोजन खाएं, बच्चों को खुले मैदान में खेलने दें, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, पर्याप्त पानी पिएं, समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं, योग और प्राणायाम को अपनाएं, नशे से दूर रहें और गांव की पारंपरिक अच्छी आदतों को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, स्वस्थ जीवन केवल दवाइयों से नहीं बनता बल्कि अच्छी आदतों से बनता है। गांव की संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ चलने वाला जीवन ही सबसे संतुलित जीवन है। यदि हम आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए गांव की अच्छी परंपराओं को अपनाए रखें तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और खुशहाल समाज दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गांव में लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। सामूहिक सहयोग, भाईचारा, श्रोता साथियों, ये सभी होते हुए गांव की पहचान होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: सामाजिक जुड़ाव व्यक्ति को अकेलेपन से बचाता है, परिवार और समाज का भावनात्मक सहयोग मानसिक मजबूती के लिए उपयोगी होता है। साथ ही श्रोता साथियों, ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। श्रोता साथियों, अध्ययन बताते हैं जिन लोगों के सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि गांव में आज भी कई लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए घरेलू और पारंपरिक उपायों को अपनाते हैं।
0: जी जी।
1: जैसे कि तुलसी, गिलोय, नीम, हल्दी, अदरक, आंवला, एलोवेरा, श्रोता साथियों, अन्य ये औषधियां हैं, इनका उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है।
0: जी हाँ।
1: हालांकि श्रोता साथियों, गंभीर बीमारी होने पर हमें डॉक्टर की सलाह लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोता साथियों, पारंपरिक ज्ञान स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
0: जी हाँ मनीषा, स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं बल्कि शरीर, मन और समाज तीनों का संतुलित और प्रसन्न होना है। गाँव की जीवन शैली हमें यही संतुलन सिखाती है। मिट्टी से जुड़ाव, सादा भोजन, नियमित श्रम, परिवार का साथ, प्रकृति का सानिध्य और सामुदायिक सहयोग, ये ऐसे अनमोल गुण हैं जिन्हें आधुनिक जीवन की भागदौड़ में भी अपनाया जा सकता है।
1: जी हाँ,
0: समय की मांग है कि हम अपनी परंपराओं को पिछड़ापन न समझें बल्कि उनमें छिपे वैज्ञानिक और स्वास्थ्यवर्धक पहलुओं को पहचाने। जब गांव का हर परिवार पौष्टिक भोजन, स्वच्छता, नियमित दिनचर्या, पर्यावरण संरक्षण और आपसी सहयोग को अपनी आदत बनाएगा, तब केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा गांव स्वस्थ, आत्मनिर्भर और खुशहाल बनेगा। इसलिए हम सबको मिलकर यह बात माननी होगी, आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ अपनी ग्रामीण संस्कृति की उन अमूल्य जीवन शैली को भी जीवित रखेंगे जो हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन और मजबूत समाज की दिशा में आगे बढ़ाती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही वो आप सभी को जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप अधिक जानकारी के लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं हमारी इस ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
0: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत करते हैं आपसे एक नए विषय को लेकर। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसा कि श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है और इस यात्रा में कभी हमें असफलता मिलती है तो कभी हमें सफलता मिलती है। कभी हमारे पास खुशियाँ होती है साथियों, तो कभी हम चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे समय में जो शक्ति हमें आगे बढ़ने का साहस देती है, यानी कि जो हमें गिरकर फिर से उठना सिखाती है और हमारे सपनों को पंख देती है, उसे ही हम प्रेरणा कहते हैं। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि प्रेरणा वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार करती है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है और प्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो बातें ढेर सारी होंगी दोस्तों, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ आप सभी को मनोरंजन करवाते हैं, तो आज भी श्रोता साथियों यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय जुड़ रहा है कि हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसा कि साथियों गीत से पहले मेरी आपसे कुछ बातें रही थी कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है, जहाँ हमें सफलता मिलती है तो वहाँ हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। कभी हमारे पास ढेर सारी खुशियाँ होती हैं तो कभी दुख होता है और कभी चुनौतियों का सामना हमारे जीवन में हमें करना पड़ता है। ऐसे में श्रोता साथियों प्रेरणा ही एक ऐसी चीज है जो हमें गिरकर उठना सिखाती है। और दोस्तों जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया भी था कि कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि क्या यह किसी पुस्तक में मिलती है या फिर किसी व्यक्ति से मिलती है या फिर ये हमारे भीतर ही छिपी हुई है जिसे हम जान नहीं पाते हैं। अगर बताऊं श्रोता साथियों तो वास्तव में प्रेरणा का कोई एक स्रोत नहीं होता। ये जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हमारे अपने विचारों से ही हमें प्राप्त हो सकती है। आवश्यकता दोस्तों केवल उसे पहचानने की होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का मतलब होता है किसी अच्छे कार्य के लिए मन में जागृत होने वाली सकारात्मक भावना। दोस्तों जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित होते हैं और जब हमारे भीतर कुछ नया करने की इच्छा पैदा होती है तो हम देखते हैं कि उससे हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम कठिनाइयों से हार नहीं मानते साथियों तब प्रेरणा हमारे साथ होती है। यानी कि प्रेरणा केवल बड़े कार्यों के लिए नहीं होती, जैसे कि एक छात्र को पढ़ाई के लिए, एक किसान को खेती के लिए, एक खिलाड़ी को अभ्यास के लिए साथियों, एक कलाकार को सृजन के लिए, वहीं एक सामान्य व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है हमारे अपने सपने। दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ सपने तो होते ही हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक या उद्यमी बनना चाहते हैं। दोस्तों यही सपने जो होते हैं वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब व्यक्ति अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखता है ना साथियों, तब हमारे भीतर उन्हें पूरा करने की लगन भी पैदा हो जाती है। सपने हमें ये याद दिलाते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों अगर बताया जाए तो सपनों के बिना जीवन दिशाहीन हो सकता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सपने केवल सोते समय नहीं बल्कि जागते हुए भी देखने चाहिए। वह सपने हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं जिन्हें हम जागते हुए देखते हैं। तो ये तो श्रोता साथियों हम जान पाए हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सपने होते हैं। तो और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही हमारी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि दोस्तों बात कर रहे हैं कि प्रेरणा आखिर हमें मिलती कहाँ से है, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि प्रेरणा प्राप्त करने का सबसे जरूरी माध्यम है सपने, और सपने वो होते हैं जो हम सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए देखते हैं, और उन्हीं सपनों को पूरा करने की लगन हमारे अंदर पैदा होती है। यही दोस्तों, अगर बात करूं परिवार से मिलने वाली प्रेरणा की, तो हमारे जीवन की पहली प्रेरणा अक्सर हमारे परिवार से ही हमें मिलती है। माता पिता का संघर्ष, उनका परिश्रम और उनका त्याग हमें श्रोता साथियों बहुत कुछ सिखाता है। देखते हैं कि एक पिता जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वह अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। वहीं एक माँ जो हर परिस्थिति में परिवार को संभालती है, श्रोता साथियों वह धैर्य, प्रेम और समर्पण की मिसाल बन जाती है। वहीं दादा दादी और नाना नानी के अनुभव भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख देते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि उनकी कहानियाँ, उनके संघर्ष और उनके जीवन के अनुभव हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, कहा जा सकता है कि हमारे जीवन में हमें पहली प्रेरणा हमारे परिवार से मिलती है। यही अगर महान व्यक्तियों के जीवन की प्रेरणा के बारे में जाने, तो इतिहास और वर्तमान समय में ऐसे कई महान व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिल सकती है। जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी श्रोता साथियों, तब हमें ये समझ आता है कि सफलता आसान नहीं होती, लेकिन असंभव भी नहीं होती। महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे वर्षों का परिश्रम होता है, अनुशासन होता है, धैर्य होता है और संघर्ष छिपा हुआ होता है। दोस्तों, उनके जीवन की कहानियां हमें ये सिखाती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। प्रकृति भी श्रोता साथियों हमें इस तरीके से ही प्रेरणा देती है, क्योंकि प्रकृति को हम एक महान शिक्षक मानते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो प्रकृति का हर तत्व हमें कोई ना कोई नया संदेश देता है। जैसे कि उगता हुआ सूर्य हमें हर दिन नई शुरुआत का संदेश देता है, वहीं बहती हुई नदी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की सीख देती है। दोस्तों, प्रकृति के जो विशाल वृक्ष होते हैं वे हमें धैर्य और मजबूती का महत्व समझाते हैं, और जो छोटे छोटे बीज हैं वह हमें बताते हैं कि बड़े परिवर्तन छोटी शुरुआत से ही होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से प्रकृति का अवलोकन करने वाला व्यक्ति जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने लग जाता है। हम देखते हैं कि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेरणा केवल सफलता से ही मिलेगी, जबकि दोस्तों वास्तविकता ये है कि कई बार सबसे बड़ी प्रेरणा असफलताओं से ही मिलती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाता है लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता, तब वह पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरता है। साथियों, असफलता हमें हमारी कमियों को पहचानने का अवसर देती है, क्योंकि जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा साथियों, सफलता का आनंद भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेने की आवश्यकता है हमें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सपनों को पूरा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जैसा कि हमने जाना कि हमारे पास ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कोई किसान दिन भर मेहनत करके, त्याग करके सफलता प्राप्त करता है, कोई छात्र कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करता है, वहीं कोई महिला आत्मनिर्भर बनकर समाज में नई पहचान बनाती है। दोस्तों, ऐसी ही वास्तविक कहानियां हमें ये विश्वास दिलाती है कि यदि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्रेरणा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें किसी एक स्थान पर मिल जाए। ये तो श्रोता साथियों हमारे सपनों में, हमारे परिवार में, प्रकृति में, महान व्यक्तियों के जीवन में और सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों से बढ़कर आगे बढ़ने में हमें मिलती है। आवश्यकता केवल अपनी आंखें, मन और विचार खुले रखने की है। दोस्तों, जब व्यक्ति प्रेरणा के इन स्रोतों को पहचान लेता है तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। प्रेरणा ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने का साहस देती है। साथियों, इसलिए आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों, अपने जीवन में प्रेरणा खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अपने सपनों को पहचानिए, अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने आसपास की सकारात्मक बातों से सीखिए साथियों, और निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प ले लीजिए। याद रखिए, उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से भरी जाती है। यदि आपके भीतर भी श्रोता साथियों विश्वास और प्रेरणा है तो आपके सपनों का आकाश असीमित होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, और बातें भी मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं। तो विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक प्रेरणादायक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: भाई बोनो, घर की निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।